वंदना कार्यक्रम को जारी रखते हुए कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शब्द भाई अमरीक सिंह जख्मी और साथियों की आवाजों में।

0: भाई अमरीक सिंह जख्मी और साथियों के गाए इस शब्द के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें एक ऐसे पौधे की जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और हमारे द्वीपों में ये पौधा बहुतायत में पाया भी जाता है, लेकिन इसकी उपयोगिता से हम लगभग अनभिज्ञ हैं। जी हाँ, हमारा इशारा है रतनजोत यानी जमाल घोटे के पौधे के बारे में। जमाल घोटे के पौधे की खेती किसानों को ऊर्जा के बारे में स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, किंतु इसके बारे में अभी आवश्यकता है अनुसंधान कार्यों की, लोगों में इसके महत्व को उजागर करने की तथा इसकी खेती को लोकप्रिय बनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने की। जमाल घोटे के पौधे की लगभग 9 प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है। ये एक बहुवर्षीय और शीघ्र बढ़ने वाला पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है। छाल बारीक कागज जैसी परत में सूख कर उतरती है। तने और पत्तियों को तोड़ने पर सफ़ेद रंग के दूध जैसा पदार्थ जिसे लैटेक्स कहते हैं निकलता है। इसकी पत्तियां 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी, पीले हरे रंग की, चिकनी और हृदय के आकार की होती है। फूल शाखाओं के अंतिम सिरे पर खिलते हैं। इसका फल हरे रंग के कैप्सूल की तरह गोल होता है तथा फल का व्यास 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। फल पकने पर इसका रंग पीला होकर काला हो जाता है। गुच्छों में लगभग 3 से 4 बीज होते हैं एक फल में। किसान भाइयों, रतनजोत यानी जमाल घोटे के पौधे के कई गुण होते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे पहला, अखाद्य तेल के स्रोत के रूप में। इसके बीज से निकला तेल साबुन व मोमबत्ती बनाने एवं मशीन में ऑयलिंग करने के काम में आता है। इसका तेल प्रकाश करने के काम में भी आता है और ये धुआं नहीं देता। इसके विभिन्न उत्पादों को

0: रासायनिक पदार्थ, रंग, कॉस्मेटिक्स, वार्निश, कीटनाशक, पशु व कुक्कुट आहार बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। डीजल के विकल्प के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। विभिन्न परीक्षणों से यह ज्ञात हो चुका है कि रतन जोत के तेल का उपयोग सीधा डीजल के रूप में भी किया जा सकता है, किंतु डीजल का भाव अपेक्षाकृत कम होने तथा कुछ तकनीकी कारणों से तेल का उपयोग डीजल के रूप में आमतौर पर प्रचलित नहीं हो पाया है। हालांकि आपातकाल में इसका डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग कारगर है। खेत के चारों ओर इसे पास पास लगाने से ये एक जैव बाड़ का काम भी करती है, जो कि तारबंदी की अपेक्षा काफी किफायती भी है। इसके बीच में किसान अन्य फसलें बोकर जानवरों तथा तेज हवाओं से फसलों की रक्षा कर सकते हैं। जमाल घोटा का पौधा शीघ्र वृद्धि वाला एवं झाड़ीनुमा होता है, अतः अत्यधिक ढलान वाली जमीन व वा बंजर भूमि पर सघन वृक्षारोपण से भूमि के कटाव को भी हम रोक सकते हैं। जमाल घोटे के बीज से तेल निकालने के पश्चात बची हुई खली से बायोगैस संयंत्र सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है एवं बायोगैस संयंत्र से निष्कासित खली को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खली में नाइट्रोजन 3.2%, फास्फोरस 1.4% एवं पोटाशियम 1.2% उपस्थित होता है। वर्ष में एक बार ये पौधा अपने सारे पत्ते गिरा देता है, जो कि एक अच्छी खाद का कार्य करता है। किसान भाइयों, जमाल घोटे में जेट्रोफिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसमें कैंसर प्रतिरोधी क्षमता होती है। साहित्य में जमाल घोटे का कैंसर संबंधी उपचार में उल्लेख किया गया है। इसका तेल त्वचीय रोगों जैसे दाद, खाज, खुजली, गठिया, पक्षघात आदि में उपयोगी पाया गया है। इसके दूध से असाध्य जख्म भरे जा सकते हैं। इसे दंत रोगों में तथा मसूड़ों पर लगने वाले मसूड़ों की सूजन दूर करने में भी काम में लाया जाता है। पत्ती के रस का उपयोग भी कुछ रोगों के उपचार में किया जाता है। हाँ तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि अभी आप जमाल घोटे की जो उपयोगिता है इससे ज़रूर वाकिफ हो गए होंगे। कल के हमारे अंक में हम चर्चा करेंगे जमाल घोटे के फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में।
1: अभी आप कार्यक्रम एग्री टिप्स सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर विष्णु भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपने अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मोहित शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खिंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Defense Minister Shinzo Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the Government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India.

0: India will host the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today. The meeting will be chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia. It will bring together communications ministers and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, ICTs, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The event will provide a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building and inclusive digital connectivity. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of Jammu and Kashmir High Court in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah disclosed this in a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensuring constitutional safeguards. National Testing Agency, NTA, has said that its Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students and rejected concerns about it being expensive. An NTA Answer Key Challenge is an online process where candidates who take an exam like JEE Main, NEET and or UGC NET can object to errors in the provisional answer key. In a social media post, NTA said, if even a single candidate challenges a question and the subject experts accept the challenge, the revised answer key applies to every candidate who wrote the exam. It said the fee is charged for challenging an answer to discourage frivolous challenges and it is refunded if the challenge turns out to be right. NTA said 200 rupees per question is refunded to the candidate whose challenge is upheld. The agency said the fee exists to discourage frivolous challenges, not to profit from genuine ones. It said an accurate challenge from any candidate can correct the record for lakhs of others. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy, HPEC, to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. And in badminton, Indian shuttlers will be in action today in the men's and women's doubles quarterfinals at the BWF World Championships 2026 in New Delhi. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार MV सेंटिनल मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल शाम 7 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान रविवार 23 तारीख को दोपहर बाद 2 डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV कैमल बे लिटिल अंडमान के लिए आज रात 9 श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी कल सुबह 9 लिटिल अंडमान से। MV कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए कल सुबह 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान रविवार 23 तारीख को शाम 4 कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। MV बारटान शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान

आपदा 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बार्टन स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी कल सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से। एमवी कचाल शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान परसों रविवार 23 तारीख को प्रातः 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान परसों रविवार 23 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा।

0: अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बातें करने जा रहे हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जो बचपन में हमें माँ दादी की गोद में सुलाती थी और आज भी हमारे दिलों में वह जादू जगाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कहानी की। आखिर क्या होती है ये कहानी? कहानी महज कुछ शब्दों या घटनाओं का जोड़ नहीं होता, बल्कि यह इंसानी भावनाओं, सपनों और अनुभवों की एक ऐसी बहती नदी है जिसमें हर कोई बह जाना चाहता है।

सोचिए, जब कोई कहता है एक समय की बात है, तो अचानक हमारे दिमाग में एक नई दुनिया बनकर तैयार हो जाती है। कहानी की यही तो खासियत है, यह काल्पनिक भी हो सकती है और हमारे रोजमर्रा के जीवन का कड़वा या मीठा सच भी। एक अच्छी कहानी हमें हंसाती है, रुलाती है, सोचने पर मजबूर करती है और कभी-कभी तो हमें अपने ही किसी छिपे हुए रूप से मिला देती है। उसमें कुछ किरदार होते हैं, थोड़ी सी उलझन होती है और फिर आता है एक ऐसा मोड़ जो हमारी उत्सुकता को आखिरी पल तक बनाए रखता है।

दोस्तों, रेडियो के इस दौर में कहानी का महत्व और भी खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ तस्वीरें नहीं बल्कि सिर्फ आवाज़ और आपकी कल्पना काम करती है। कहानी जब हमारे कानों से होकर दिल में उतरती है, तो हर सुनने वाला अपनी सोच के हिसाब से अपने दिमाग में उसके रंग भरता है। तो बस मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ अपनी कहानियाँ बांटते रहिए, क्योंकि हर इंसान के पास सुनाने के लिए एक खास कहानी ज़रूर होती है।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी सीमा।

लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को। समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से कार्यक्रम। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस कांड की 337वीं कड़ी।

वानर और आसुरी सेनाओं के युद्ध का अंत होता नहीं दिखता। सारा प्रांतर शवों से पट गया है। रक्त और मज्जा की जैसे नदियां बह चली हैं। इनमें भूत पिशाच स्नान कर रहे हैं। चील और कौवे कटे अंग लेकर उड़ते और आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। अजीब विभत्स दृश्य उपस्थित है। लेकिन रावण अपनी सेना का उत्तरोत्तर संगार होता देख माया रचने की सोचता है। इधर श्री राम को पैदल देखकर इंद्र अपने सारथी मातली के साथ अपना रथ भेज देते हैं। श्री राम जब रथारूढ़ होते हैं तो वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। उधर रावण ने अपना माया जाल फैलाया। स्वयं राम को छोड़कर वानर भालू सेना को जगह जगह कई राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे। ये दृश्य देख लक्ष्मण भी मूरत की तरह ठगे से खड़े रह गए। किंतु श्री राम से इस दृश्य का भेद और अपनी सेना का असमंजस छिपा न रहा। वे बोले, हे वीरों, युद्ध करते करते तुम लोग थक गए हो, अतः तुम्हें विश्राम चाहिए। अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 337वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा की 8वीं कड़ी।

नमस्कार श्रोताओं, गांधी चर्चा में बातें शांतिदूत गांधी की। श्रोताओं, अपने आक्रमणकारियों के प्रति गांधी के व्यवहार की चर्चा पूरे नाटाल प्रदेश में फैल गई। गांधी जी के निर्दोष होने का समाचार वहां के सभी अखबारों में छापा गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को एक विशेष व्यक्ति माना जाने लगा। गांधी जी अपने परिवार के साथ आराम से रहने लगे। उन्होंने सोचा अब वे केवल जनसेवा करेंगे, पर सेवा से पहले स्वयं को अनुशासित करना होगा और उन्होंने सादा जीवन बिताने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने स्वयं अपने कपड़ों में क्लाफ लगाया और उन पर इस्त्री भी की। बहुत अधिक क्लाफ लगाने से उनकी कमीज का कॉलर कड़ा होकर ऊपर उठ गया। जब वे कचहरी में पहुंचे, उनके साथी वकील उन्हें देखकर हंसी उड़ाने लगे। गांधी जी भी उनके साथ हंसने लगे और उन्होंने अपनी कथा बताई कि अब वे स्वयं अपना काम कर रहे हैं। फिर तो सभी खूब हंसे। एक दिन गांधी जी अपने बाल कटवाने गए। नाई गोरा था, उसने चट कह दिया, हम भारतीयों के बाल नहीं काटते। गांधी जी ने फौरन एक बाल काटने वाली कैंची और कतरनी खरीदी और घर चले आए। उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल स्वयं काटे। बच्चे और कस्तूरबाई बड़े हंसे। अगले दिन जब वे अदालत में पहुंचे तो एक वकील ने उनकी खिंचाई की, गांधी भाई तुम्हारे बालों को क्या हुआ? भाई बात यह है, मैं अपना नाई स्वयं बन गया हूँ। ये सुनकर सब वकील हंस हंस कर दोहरे हो गए। समय बीता, कस्तूरबाई ने तीसरे बेटे रामदास को जन्म दिया। उनके जन्म के बाद गांधी जी ने नर्सिंग पर अनेक पुस्तकें पढ़ी। चौथे बेटे को जन्म देने के समय गांधी जी ने कस्तूरबाई की बड़ी सहायता की। उन दोनों ने बड़े प्यार से अपने चौथे पुत्र का नाम देवदास रखा। नए विचारों के प्रति गांधी जी सदा उद्यत रहते थे। उन्होंने कहीं पढ़ लिया कि मनुष्य मूल रूप से शाकाहारी है और उसे कच्ची सब्जी खानी चाहिए। बस वह भी कच्ची सब्जियां खाने लगे। गांधी जी ने बाएं हाथ से भी लिखने की आदत डाली।

जब कभी उनका दाहिना हाथ थक जाता तो वे बाएं हाथ से लिखने लगते। उन्होंने घर के खर्च में कमी लाने के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चे में कटौती कर दी। वे पैदल दफ्तर जाने लगे, साथ साथ अन्य प्रयोग भी करने लगे। गांधी जी ने अपने बच्चों को यूरोपीय स्कूल में नहीं पढ़ाया, वह उन्हें स्वयं पढ़ाते थे। वह बड़े बेटे को अपने साथ दफ्तर ले जाते और रास्ते में उनसे बातें करते। उनके विचार में बेटों के लिए यही अच्छी शिक्षा थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले गोरे लोग मूलतः ब्रिटेन से और हॉलैंड से आए थे। एक समय ऐसा आया जब इन दो गोरे समुदाय के बीच चलने वाले झगड़े ने युद्ध का रूप ले लिया। इसे बोअर युद्ध कहा गया। गांधी जी को युद्ध से घृणा थी। वे मानते थे कि युद्ध का अर्थ हिंसा है, पर युद्ध छिड़ चुका था। उन्होंने तय किया कि वे घायलों की सहायता करेंगे। उन्होंने ब्रिटिश सेना के घायल जवानों की देखरेख करने के लिए इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। गांधी जी और उनके मित्र रात दिन घायलों की सेवा में लगे रहे। युद्ध के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी सेवाओं की प्रशंसा की और गांधी जी तथा उनके मित्रों को पदक देकर सम्मानित किया। गांधी जी के पास भारत से बराबर पत्र आ रहे थे। वे सभी एक ही बात कहते थे कि गांधी जी भारत लौटकर अपने देश में काम करें। आखिर गांधी जी ने भारत लौट जाने का निश्चय कर लिया। इधर दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों ने गांधी जी को अपना संकटहारी माना था। उन सब ने गांधी जी से वहीं रुके रहने की प्रार्थना की। गांधी जी ने उनसे वादा किया कि भविष्य में जब कभी भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी वह अवश्य आएंगे। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों ने गांधी जी और उनके परिवार के सम्मान में अनेक विदाई समारोह आयोजित किए। कुछ ने कस्तूरबाई को सोने के जेवर भेंट में दिए। जब पार्टियां समाप्त हुई तो गांधी जी ने उपहार में मिली सारी वस्तुओं की एक सूची बनाई। कस्तूरबाई की समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। कस्तूरबाई ने पूछा, ये चीजें तो हमें उपहार में मिली है। गांधी जी छूटते ही बोले, पर ये हमारी नहीं है। मैं इन्हें बैंक के लॉकर में जमा कराऊंगा और इनका उपयोग केवल दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के कल्याण के लिए किया जाएगा। गांधी जी अपने निर्णय पर अटल थे। मैं अपने लिए इनमें से एक दो चीज भी नहीं रख सकती? कस्तूरबाई ने पूछा। नहीं, ये हमारी नहीं है। गांधी जी ने सारे के सारे जेवर बैंक के लॉकर में रख दिया। कस्तूरबाई ने रास्ते के लिए खाना बनाया। गांधी जी ने ढेर सारे फल खरीदे और फिर वे सब पानी के जहाज से भारत के लिए चल दिए। 3 सप्ताह की यात्रा के बाद जहाज बंबई बंदरगाह में आ पहुंचा। डेक पर गांधी जी के साथ कस्तूरबाई और बच्चे भी खड़े थे। बंदरगाह पर उनका स्वागत करने के लिए भीड़ जमा थी। लोग हाथ हिला हिला कर जोर से कह रहे थे, गांधी जी आ गए हैं, गांधी जी लौट आए हैं। जब गांधी जी और कस्तूरबाई पायर से होते हुए तट की ओर बढ़े तब बंबई के प्रमुख नागरिक आगे बढ़े और उन्होंने दोनों को हार मालाएं पहनाई। इसके तुरंत बाद वे सब रेल से राजकोट चले गए। कस्तूरबाई और बच्चों को राजकोट में छोड़कर गांधी जी अपने गुरु गोखले से मिलने पूना आ गए। बातचीत के बाद गोखले ने कहा, अगर तुम देश के लिए काम करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने देश को समझो। गाँव में जाओ, गांव वालों से मिलो, लोगों को पहचानो। हाँ, मैं गांव में ज़रूर जाऊंगा। फिर वह सोचकर बोले, मैं जो भी कहूंगा अपने आप भी वही करने का यत्न करूंगा। इसके बाद गांधी जी ने गोखले से विदा ली। राजकोट आकर गांधी जी ने कस्तूरबाई को बताया कि वह भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं। कस्तूरबाई ने भी निश्चय किया कि वह भी उनके साथ जाएंगी। भारत दर्शन से पहले गांधी जी ने भारत की समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया। उनकी समझ में आया कि यहाँ की अधिकांश जनता गाँव में रहती है और ज़्यादातर लोग गरीब है। उन्होंने तय किया कि वे गरीबों विशेषकर गाँव में रहने वालों के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी निश्चय किया कि वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत की स्वाधीनता के लिए भी संघर्ष करेंगे। श्रोताओं, गांधी चर्चा में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप गांधी चर्चा कार्यक्रम की 8वीं कड़ी सुन रहे थे।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सबको जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स और 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी दी जाती है कि समुद्र में वायु 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अतः मछुआरों को 24 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। जन सेवाओं को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि आज द्वीपों के एक या दो भागों पर भारी वर्षा होगी, जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर तक हो सकती है, एवं द्वीपों के एक या दो भागों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी। कल सुबह तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आनंद लीजिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे जगजीत सिंह, चित्रा सिंह और लता मंगेशकर। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर कल्याणी राय का सितार वादन प्रसारित किया जाएगा। विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1355वीं कड़ी। निकोबारी कार्यक्रम में 11:30 पर सुनिए लोकगीत। दोपहर 12 बजे तेलुगु में आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। मलयालम में स्वास्थ्य कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे जफर हुसैन खान बदायूनी और साथी। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न।

होगी, जबकि FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम से, जिसमें आप सुनेंगे एक ही श्रोता के पसंद के फिल्मी गीत। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर VB पांडे से बातचीत की जाएगी, विषय रहेगा द्वीपों में पपीते की खेती। समाचार तरंगिणी सुनिए 6:30 पर। 6:45 पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 15वीं कड़ी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:55 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएं दी जाएंगी। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम सुनिए 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात 8 बजे। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान। संध्या से आते हैं कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 पर संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: निरूपितम्। रक्षामन्त्री कोइजुमीवर्यः द्वैपाक्षिकरक्षासहकारस्य प्रगतिविषये अवदत् यत् भारतेन सह सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं जापानसर्वकारस्य निरन्तरप्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। भारतम् अद्य पुणेनगरे द्वादशमं ब्रिक्ससम्प्रेषणमन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयति। अस्याः सभायाः अध्यक्षः केन्द्रीयसञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियावर्यः भविष्यति। सभायां ब्रिक्ससदस्यराष्ट्राणां सम्प्रेषणमन्त्रिणः वरिष्ठप्रतिनिधयः च आईसीटी इति संगृह्य सूचनासम्प्रेषणप्रौद्योगिकीनां डिजिटलपरिवर्तनस्य नवान्वेषणस्य संरचनायाः च विषये सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः ब्रिक्स सदस्यराष्ट्राणां कृते उदयोन्मुखप्रौद्योगिकीनां डिजिटल सार्वजनिकसंरचनायाः साइबर सुरक्षायाः क्षमतानिर्माणस्य समावेशि डिजिटल सम्पर्कस्य च विषयेषु विचाराणाम् आदानप्रदानाय मञ्चं प्रददाति। राष्ट्रियपरीक्षणसंस्थया एनटीए इत्यनेन उक्तं यत् तस्य आंसर की चैलेंज इति पद्धति सर्वेषां छात्राणां कृते निष्पक्षतया परिकल्पिता अस्ति तथा च तस्य व्ययस्य विषये चिन्तामपि निराकृतम्। एनटीए इत्यस्य आंसर की चैलेंज इति एका ऑनलाइन इति आभासीय प्रक्रिया अस्ति यत्र परीक्षार्थिनः अस्थायी आंसर की इत्येतस्मिन् त्रुटयः अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 3.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 86% तथा न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 29.2 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय सवेरे 5:09 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:36। मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 30 मिनट पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप आनंद ले सकेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे जगजीत सिंह, चित्रा सिंह और लता मंगेशकर। तत्पश्चात आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का सुबह 9:00।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर कल्याणी राय का सितार वादन प्रसारित किया जाएगा। विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1355वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट लेकर आया है एक नई शुरुआत। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान, फुल टाइम न्यूरोलॉजी एंड फुल टाइम गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक स्पेशलिस्ट सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल अंडर वन रूफ। अब माइग्रेन, लकवा, मिर्गी, चक्कर, नसों की बीमारियां, याददाश्त की समस्याएं, EEG, EMG और NCV जैसी उन्नत जांचों के साथ साथ गर्भावस्था की देखभाल, बांझपन, इनफर्टिलिटी, PCOS, महिलाओं की सभी सामान्य एवं जटिल समस्याओं का विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध है। स्वास्थ्य से समझौता न करें। विजिट हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें 9933219444।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीपों के उपराज्यपाल ने महाबलीपुरम में आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 71वीं बैठक में भाग लिया। गैर पंजीकृत थोक अपशिष्ट उत्पादकों को CBCP पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया है। चिन्मय मिशन की ओर से 23 अगस्त को कांवड़ सह कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में द्वीप समूह की टीम ने लक्षद्वीप टीम को हराकर शानदार जीत हासिल की।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की, जबकि इसकी मेजबानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने की। उपराज्यपाल ने महिला एवं बाल सुरक्षा, पर्यटन, पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, डिजिटल निगरानी और संस्थागत समझौतों के माध्यम से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ीकरण में हुई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने उनके समक्ष एकीकृत तटीय राज्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत चेन्नई, कामराज और विशाखापत्तनम जैसे मुख्य भूमि के बंदरगाहों पर जहाजरानी, वित्त, समुद्री बीमा, बंकरिंग, कंटेनर मरम्मत और कौशल केंद्र विकसित किए जाएंगे। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद की ओर से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों का पूरे देश में सख्त और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये नियम नगरपालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, सोसाइटियों, कार्यालयों आदि पर लागू होते हैं। सभी कचरा उत्पादकों के लिए कचरे

0: को चार श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य है, जिसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा, बैटरी बल्ब, दवाएं, रसायन और ई कचरा शामिल है। नगर पालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गैर पंजीकृत BWG संस्थानों को 15 दिनों के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई संस्थान या प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और SWN नियम 2026 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के अपग्रेडेशन और पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में NH4 की वर्तमान स्थिति और कार्यों में देरी के कारणों पर चर्चा की गई। मिडिल स्ट्रेट और बाराटांग के बीच पुल के निर्माण में भी नए अनुबंध के तहत काम को समय पर पूरा करने के कदम उठाए जा रहे हैं। सांसद ने इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 82वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जुबैदा बेगम ने उपस्थिति को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं।
1: गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट लेकर आया है एक नई शुरुआत। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान, फुल टाइम न्यूरोलॉजी एंड फुल टाइम गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक स्पेशलिस्ट सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल अंडर वन रूफ। अब माइग्रेन, लकवा, मिर्गी, चक्कर, नसों की बीमारियां, याददाश्त की समस्याएं, EEG, EMG और NCV जैसी उन्नत जांचों के साथ साथ गर्भावस्था की देखभाल, बांझपन, इनफर्टिलिटी, PCOS, महिलाओं की सभी सामान्य एवं जटिल समस्याओं का विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध है। स्वास्थ्य से समझौता न करें। विजिट हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें 99332-19444।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रावण मास के पावन अवसर पर चिन्मय मिशन की ओर से 23 अगस्त को कांवड़ सह कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये यात्रा सुबह 6:30 बजे मरीना पार्क से प्रारंभ होकर श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर चिन्मय मिशन में संपन्न होगी। सभी इच्छुक श्रद्धालुओं से कांवड़ या कलश के साथ मरीना पार्क पहुंचने का अनुरोध किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अंडर 17 बालिका फुटबॉल टीम ने पहली बार प्रतिष्ठित 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये प्रतियोगिता 18 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू हुई। अपनी पहली ही प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द्वीप समूह की टीम ने 19 अगस्त को खेले गए अपने पहले पूल मैच में लक्षद्वीप की टीम को 4-1 से हराकर शानदार जीत हासिल की। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल नई दिल्ली में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत क्षमता निर्माण पर हितधारकों के साथ विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, ग्रामीण वॉश भागीदारों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों सहित फील्ड लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए क्षमता निर्माण मॉड्यूल की समीक्षा करना और उन पर चर्चा करना था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की शाखा MSME कार्यालय श्री विजयपुरम को क्यारी के एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर से ICAR सिरकोट मुंबई के क्षितिज 2.0 स्टार्टअप इनक्यूबेशन कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। ये कार्यक्रम MSME, स्टार्टअप्स, नवाचारों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और नए विचारे वाले छात्रों के लिए खुला है। चयनित प्रतिभागियों को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, फील्ड ट्रायल, तकनीक सत्यापन, बाजार की ज़रूरतों को समझना और बिजनेस मॉडल तैयार करना शामिल है। इच्छुक प्रतिभागी 25 अगस्त तक

iceerco.incubate.app के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से संपर्क किया जा सकता है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कृषि विज्ञान केंद्र सिप्पीघाट में वैज्ञानिक सुअर पालन पद्धतियों पर जानकारी और जागरूकता विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वाई रामकृष्ण ने सुअर पालन के तरीकों पर जानकारी दी। सत्र के दौरान अन्य वक्ताओं ने भी सुअर पालन और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग डॉलीगंज की सुअर पालन इकाई का दौरा भी कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीपों के उपराज्यपाल ने महाबलीपुरम में आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में भाग लिया। गैर पंजीकृत थोक अपशिष्ट उत्पादकों को CPCB पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया है। चिन्मय मिशन की ओर से 23 अगस्त को कांवड़ सह कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में द्वीप समूह की टीम ने लक्षद्वीप टीम को हराकर शानदार जीत हासिल की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

विविधताओं का संगम है हमारा ये देश, जहाँ भिन्न भिन्न भाषा, धर्म, आयु और जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पर जब भी कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, हमारे मन से बस यही बात निकलती है,

हम बहुत खुशनसीब हैं, तभी तो हिंदुस्तान की इस पावन धरा पर हमने जन्म लिया है। जहाँ माता स्वरूपी नदियाँ हैं, तो कहीं पिता रूपी हिमालय की चोटियाँ हैं, कहीं हरे भरे खेत हैं, तो कहीं गर्म रेगिस्तान है। ये सब मिलकर बनता है हमारा हिंदुस्तान। हमारी मातृभूमि के कण कण का है उपकार हमारे जीवन पर।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना शायद संभव नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जब जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी, जब हमारे पास बहुत सारी दौलत होगी और सफलता होगी, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन सच तो ये है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि का इंतज़ार नहीं करती। वो तो हमारे आसपास बिखरे उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम भागती हुई जिंदगी में देख नहीं पाते। इसलिए जीवन को केवल पाने की दौड़ मत बनाइए। जो मिला है उसका शुक्रिया कीजिए, जो पास है उसकी कद्र कीजिए, जो बीत गया उसे स्वीकार कीजिए और जो आने वाला है उसका मुस्कुराकर इंतज़ार कीजिए।

समीर का लिखा ये गीत था तेरे नाम फिल्म से। आवाज़ें थी उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की। संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत था दिल ने जिसे अपना कहा फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
4: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स और 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी, एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
3: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं कुणाल गांजावाला और अलका याग्निक की आवाज़ों में सिलसिले फिल्म का ये गीत, बोल समीर के, धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था रन फिल्म से। आवाजें थी अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की, गीत रचना समीर की। इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग

0: उपभोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, NEET या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे

0: उद्योगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
3: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला

0: ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। चीन में कल से रोबोट ओलंपिक बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है। कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें। आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टर्डम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
3: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level, citing examples of experiences of the COVID-19 pandemic and the West Asia crisis. He said that such coordination mechanisms should become a natural part of the government's work culture. Mr. Modi also called for effective use of artificial intelligence while ensuring human intervention and for exploring innovative ways of combining the capabilities of AI with human expertise. Prime Minister concluded by reiterating the need for a whole-of-government approach, greater coordination, innovative thinking and collective ownership to address complex challenges and shape India's future with a long-term perspective. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to media, Mr. Shah said that the decision amounts to an open defiance of the law enacted by Parliament.

0: ये थी सरदार अंजुम की रचना जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेंजी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं गजल लता मंगेशकर की आवाज में।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप जगजीत सिंह, चित्रा सिंह और लता मंगेशकर की गाई चंद गज़लों का लुत्फ ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं यादों की बारात फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। गीत मजरू का, संगीत आर डी बर्मन का।

0: मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये गीत था झुक गया आसमान फिल्म से। बोल हसरत जयपुरी के धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, आखिर मेरी भी कोई अहमियत है। लोग सोचते हैं कि मैं मच्छर के काटने से फैल जाता हूँ। अरे भाई, मच्छर के काटने से डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है, मैं नहीं। कोई कहता है कि एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, कपड़े या तौलिया साझा करने से, या फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने पीने उठने बैठने पढ़ने काम करने से बात करने से फैल जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे बारे में ठीक से तो जान लो, मैं इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी, एंड आई अर्ज

0: एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: तराने सुहाने कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के सिलसिले को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं सीता और गीता फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और किशोर कुमार। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।
3: हवा के साथ साथ,
4: अरे अरे,
3: घटा के संग संग,
4: संभलना।
3: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

0: वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था गूंज उठी शहनाई फिल्म से। गीत रचना भरत व्यास की, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का। कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म खेल खेल में। इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी तथा संगीतकार हैं आरडी परमन।
1: अरे देख रहे हैं
2: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं
2: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा
2: तो क्या हुआ पाई।
1: हाँ तो हो जाए
2: हो जाए।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत था खेल खेल में फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कल्याणी राय का हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। इनके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं उस्ताद आफाक हुसैन खान। प्रस्तुत है राग जौनपुरी।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हे, स्टिल स्टक ऑन ओल्ड कार? स्विच टू स्मार्टर फ्यूल विद मोर सेविंग्स विद विक्टोरियस SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
4: श्रोताओं, राग जौनपुरी के बाद अब पेश है राग केदारा।

0: श्रोताओं, अभी आप कल्याणी रॉय का हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। एक सूचना।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट, कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट, कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
3: Let this March be grand to bring home your favorite SUV. Drive home the Maruti Suzuki Grand Vitara Strong Hybrid now at an effective price starting ₹11.93 lakh. Experience the revolutionary hybrid technology, premium comfort, advanced safety, and a redefined drive only at Nexa. Plus, enjoy exciting benefits on the Grand Vitara Strong Hybrid. Make your upgrade smarter. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply. Nexa.
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है।

0: सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि ये सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुँचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में, आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर सिपाही हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। शिव शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सहस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने, आप कहते हैं ना कि अपने मनोबल या आत्मबल तो हमें हमारी सेवाएं सेनाएं देती हैं, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिल-ए-तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है, अगर खासतौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे? और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पड़दौरा गांव है, वहां बिता है। मेरा परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे परिवार से हमें मेहनत और अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
0: जी।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया है
0: जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से, और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नज़र आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बैठे हैं, तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है, काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप शिव शंकर कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है, और SSB ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा ऐसी इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का फैसला किया। उसके बाद SSC की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर SSB को ज्वाइन किया है। एक SSB एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
0: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे।

0: उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति जरूर हुई होगी कि
1: जी
0: अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ
1: जी
0: मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है
1: सही
0: आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और
1: जी
0: ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या
1: जी जी
0: प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको यह हासिल हुआ? क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ, या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?
1: ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी, और मैंने 2012 में ये एसएसबी को ज्वाइन किया था, और इसकी जो फॉर्म थी एसएससी के थ्रू आई, और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया को चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा।
0: जी, तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ, और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: ये 2012 में हुआ है। 2012 में हमें एसएसबी ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था, लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करते रहना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया है, दिया है। और
0: उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए।
1: जी
0: सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफर आपने पूरा किया।
1: जी
0: इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुंची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब एसएसबी ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
1: सभी के लिए, ये हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, वो सबके लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई
0: जी
1: भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे वो ज़्यादा जरूरी है।
0: जी पर ऐसा तो जरूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने आपके दोस्त, आपके परिवारजन, एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से, कहानियां, क्या कुछ होता है एसएसबी में, जहां जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो वीर हैं ना, कैसी जिंदगी जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपकी किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी जुबानी उनको सुनते हैं ना, तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई जिंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते, और यही कारण है कि आज देश के युवा भावी पीढ़ी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
1: ये होता है। फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है,
0: जी
1: ये पूरा जीवन देती है हमको। अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियाँ तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियाँ वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताए फौज में कैसे चलता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और
0: जी
1: काम करते हैं।
0: जी लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही,
1: जी
0: तो ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवा देने के लिए?
1: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए सीटीसी सलोनी वारी

0: में है, वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमें सिखाया, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया। फिजिकल टफनेस से लेके मेंटल टफनेस तक सभी चीज़ को हमने सिखाया गया उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पे ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बयानी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो है एंटी नक्सल ऑपरेशंस है, वो 16वीं वाहिनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SHQ गैंगटॉक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे। और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं, 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं ये तो हम अपने फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है। और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार सहस्त्र सीमा बल से। और जैसा कि मैं साझा कर चुकी हूँ कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी की स्टूडियो आए हैं, यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिवशंकर कुमार जी, एक लंबा सफ़र तय करता है एक फौजी, 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने, ये सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: ये सफ़र मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था, उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ जब 2018 में मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था, रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और जो हमारे सहपाठी है, कार्मिक है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है उसको सीखने के लिए, जो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज़िंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे, और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है, आपके रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेनाएं और देश प्रेम रह जाता है जी। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है, है ना? तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं, इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है?
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पे ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराती रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते, तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको प्रोफेशनली साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पे ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज, मैंने पहले भी बताया, एक लाइफ है, तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छे तरह से कर सके, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है
0: जी। और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं,
0: ना तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है।

0: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है।
1: जी निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं, और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती उसके वक्त, उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश प्रेम होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
0: थोड़ा मुश्किल तो है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है। परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना, अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है।
1: जी
0: सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
1: जी सब कुछ आसान हो जाता है घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं कहीं भी छूट न जाए, दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है, कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है हमेशा सतर्क रहना। हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करने की जो आप में गुण निहित हैं इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहां पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरे टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई ज़िले की घटना है जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बारे में आज बात करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया था।
0: जी,
1: ये सफलता मेरी नहीं पूरी टीम की सफलता है जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था कि हमने ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की और नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। एसएसबी इस ऑपरेशन के बाद जमुई ज़िले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
0: उनके मन में इतना डर बन गया था
1: और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि एसएसबी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू ज़िला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें एसएसबी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
0: जी, एक बात और पूछना चाहूँगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
1: काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियां बांटी हुई होती है और वो सभी मिलके इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना

0: जितना अगर मैं क्या कहूँ इसको, सभी के लिए गर्व की
1: जी,
0: बात
1: हर
0: है ये।
1: मेंबर के लिए, जितने भी
0: जी
1: मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है। आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए।
0: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सभी अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
1: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा, जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं
0: जी
1: सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग मिली, नतीजतन आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
0: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है। टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
1: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है, लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
0: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है ही कि जो कठिन परिस्थिति जब भी है तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
1: जी, जैसा कि हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं हैं तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिरी में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा गया, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए, वो उससे भी बड़ी बात। उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
0: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है। और मेडल आगे भी आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीक़ों से करने की
1: जी
0: प्रेरणा देता है और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर और लेते हैं, और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और जितनी भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उनका भी निर्वाह करते हुए चलेंगे। मन में बात जरूर आती होगी।
0: हमेशा कोई भी ऑपरेशंस होता है तो उसके बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है और करते हैं हम लोग।
1: जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, गैलेंट्री पदक के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
0: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे डीजी महोदय के द्वारा भी डीजी सिल्वर डिस से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सामान एक खुशी देता है और साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
1: जी, इससे बेहतर करना है, और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है। जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो
0: जी
1: बाहम के लिए जिम्मेदार हैं वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश,
0: जी
1: है ना, सिर्फ देश ही याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके
0: जी
1: अलावा कुछ और नहीं।
0: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं हम लोग।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं। जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं, और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं, तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे।

नहीं लौटेंगे, और शायद यही आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहाँ भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाएं, और सेना ज्वाइन करना हर किसी के दिल में हुक ज़रूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी ज़बानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे, वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पर काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पे काम किया है, इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सीनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी, उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
0: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतनी अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जिस बटालियन में आप रहे हैं, 3-3 साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
1: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए। एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
0: जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी के तहत आप अपने आप को मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो 3 साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
1: पार्टियां होती रहती है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
0: जी, अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है?
1: फौज में ये परंपरा भी है,

0: कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती
1: अरे वाह
0: है।
1: क्या बात है मतलब आपके जितने भी दोस्त हैं वहां पर अपने हिस्से की पार्टी वहां कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ है, यूनिट में है, तब भी एंजॉय कर रही हैं, तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
0: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है,
1: हाँ
0: हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो
1: हाँ
0: उनके लिए ही सारा चीज़ समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
1: अच्छा ये बताइए कि जब घर आप जाते हैं तो घर से वापस जब अपनी यूनिट जाते होंगे तो माँ घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे, आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा,
0: वो सबके लिए होता
1: वो
0: है,
1: सबके लिए होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो वो एक महीने में खत्म होना है, या वो उससे पहले खत्म हो जाता है।
0: नहीं वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी वो सबके लिए होता है,
1: हाँ
0: वो
1: हाँ हाँ हाँ तो मुझे लगता है कि जाते साथ ही सब डब्बे खाली हो जाते होंगे,
0: जरूर जरूर
1: और बड़ी चाह होती है कि अरे घर से आए हो ये बताओ क्या लेकर आए हो।
0: हमेशा रहती है, चाहत रहती है कि कुछ तो लेकर आया हुआ।
1: अच्छा ये बताइए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई ज़िंदगी में है, जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
0: एक टीम रहता है वो हमेशा हमारे साथ चलती है,
1: और
0: फौज
1: रेडियो?
0: में रेडियो भी है, वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है, दिन दिनचर्या में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको बताते रहती है
1: हाँ
0: हमेशा।
1: हाँ ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो हैं ही, सहकर्मी तो हैं ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी बताइए कि त्योहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्योहार मनाते हैं वहाँ?
0: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्योहार हमेशा मनता है और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के
1: नाचते
0: साथ
1: गाते
0: सभी चीज़ होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है, तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्योहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि हम इसमें मैं इस बार घर नहीं गया हूँ, और बहुत धूमधाम से मनता है।
1: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
0: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम
1: और
0: लोग।
1: खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
0: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
1: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफ़ी चाहूँगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ, तिरुचिरापल्ली विजय कुमार ने आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदयपूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें आपका।
0: सभी को जय हिंद मेरा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों संदेश भेजने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा पर ये कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे, हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, ये आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगियों में शामिल करें।
0: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है,
1: जी
0: डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगी
1: और
0: आगे।
1: वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का, और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब, अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का, बीके कॉलोनी से, और बीके दत्त कॉलोनी से, और ये कह रही है कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहाँ आपको मिली, और ये बहुत

0: ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज़ पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया, जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने संदेश भेजा है, चेतन पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है। यहाँ पर समय कम है, संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन हम शिवशंकर कुमार जी को आपके संदेशों से ज़रूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है और ये है चरण कुमार का, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने, शिव पांडे लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं। मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है। संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है, देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारे फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है। संदेश भेजने वालों में पंडित सारस्वत संदेश भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12th के स्टूडेंट भी हैं जो एनडीए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिवशंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में हैं, आपने जिस तरह से व्याख्या की और आप SSB का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं। KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है। यहाँ पर दोस्त आपका नाम KKS रायपुर CG इन्होंने लिखा है। क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने भी बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है। सुमन कर्माकर का सोनितपुर आसाम से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके संदेश हम तक पहुंचे इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में और सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आने के लिए और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
1: धन्यवाद सभी को, सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सभी
0: जी,
1: जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है। सभी को जय हिंद।
0: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी SSB से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1355वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं, प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी,
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं। ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
0: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी।
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी।
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
2: जी।
0: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
2: जी।
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
2: जी।
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
0: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
2: जी।
0: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
2: जी।
0: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
2: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया

0: कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
1: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि एक कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
1: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,
1: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
0: आप हैं।
1: बिल्कुल।
0: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
1: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: नमस्कार, नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे किस पर?
2: जल
1: बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला

0: कभी ना छोड़ो। नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
1: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
2: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
3: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
2: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
3: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
3: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
3: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक,
3: बताओ।
2: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
3: और
1: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
3: हाँ, बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
2: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
3: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
4: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
0: अरे वाह।
3: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
4: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
3: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: तो,
3: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो, अब तुम्हारी बारी है।
4: जीवन सुखद बनाएंगे,
3: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है,

0: आशिकी का वो जमाना याद है।
1: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
0: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
1: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
2: जी आदाब बजा लाता हूं
3: जनाब, मोहानी की खिदमत में।
0: अरे आप, आदाब अर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
3: जी जी, शुक्रिया।
0: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
3: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
0: जी बस
3: जी।
1: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
0: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
3: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।
2: ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं,

0: कैसे पूछूं?
1: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
0: मोहानी साहब
2: जी,
0: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो?
2: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
0: क्या मतलब?
1: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
2: ये लीजिए, खा लीजिए मियां।

0: हजरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
1: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
2: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
1: आज तीसरा फाका है। शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
2: या खुदा,
1: नौश फरमाइए मियां,
2: लाइए
1: खाइए।
3: हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
4: लिख दिया।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
5: इरशाद इरशाद इरशाद ग्रामी।
1: है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह क्या बात है। है मश्क सुखन जारी,
6: चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह
1: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
4: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या क्या
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
4: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
6: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
4: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
1: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं।
6: मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
1: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
4: क्या?
1: जी, एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
6: अरे मोहानी साहब,
1: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब। चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाएं।
4: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
1: नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
6: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
1: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
4: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
0: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
4: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
1: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
4: आपने तो कुछ खाया ही नहीं।
1: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
4: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ।

0: लीजिए, आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
1: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
0: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
1: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, शब्बा खैर।
1: शब्बा खैर।
2: बला की ठंड है, लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है, और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए।
3: अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
4: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा, इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
1: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयाते जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
4: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1355वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मन इन ये खरे हम इन तका लमक तेलि मीडियम वे 438.6 मीटर है 684 किलोहर्ट्स रमांग एलि आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अनि निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza.

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल

0: प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Valsa Williams. India and Brazil have signed a memorandum of understanding to deepen cooperation in telecommunications and information and communication technologies ICTs on the sidelines of the BRICS ICT track meeting. Union Minister Sindhia said in a post that the MOU would deepen bilateral collaboration on universal connectivity, cybersecurity, digital public infrastructure, emerging technologies, capacity building and exchange of best practices. He called the agreement a strong step forward in bolstering India-Brazil collaboration for a secure and inclusive digital future. The MOU was signed on

0: श्रोताओं, अभी आप महफिले कव्वाली कार्यक्रम के तहत कव्वाल जफर हुसैन खान बदायनी और साथियों की आवाज़ों में चंद कव्वालियाँ सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मनपसंद गीतों को सुनने के लिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म टू स्टेट्स से। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है हिंगड़ी आलोट जिला रतमाल एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने।
1: आ आ

अब सुनते हैं अगला गीत कभी कभी फिल्म से। इस गीत की फरमाइश की है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे ने। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गाना।

नलेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण झांझले, सोपान तांडे और आशीष, हमारे इन सभी दोस्तों ने फरमाइश की है इस गीत के लिए। चलिए सुनते हैं इनके पसंद का ये गाना।

अब आपको सुनवाते हैं पड़ोसन फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीक मगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष ने।

पदमपुर जिला, श्री जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, हमारे इन सभी दोस्तों ने फरमाइश की है जवान मोहब्बत फिल्म के इस गीत के लिए। लीजिए सुनते हैं इनके पसंद का ये गाना।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तुझे मेरी कसम का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिव गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली ने।

श्रोताओं, अभी आप व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए

0: अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसेह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस

0: परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़

0: हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
1: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए सुनिए मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समुद्र में वायु 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अतः मछुआरों को 24 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। जनसेवाओं को यह बताया जाता है कि आज द्वीपों के एक या दो भागों पर भारी वर्षा होने 7 से 11 सेंटीमीटर तक हो सकती है। द्वीपों के एक या दो भागों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई

भागों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:33 होने हो रहे हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक लाइव फोन आउट कार्यक्रम है, इसलिए आप हमें कॉल ना करें, हम स्टूडियो से ही आपको कॉल करेंगे। और आज जिन श्रोताओं से हम जुड़ेंगे उनकी सूची पहले से ही तैयार है, तो आइए देर ना करते हुए बात करें आज के हमारे पहले दोस्त से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार
0: जी। नमस्ते, अविनाश जी बोल रहे हैं त्रिपुरा से।
1: जी जी बिल्कुल, मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
0: जी अविनाश जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत अच्छी है। और आशा बने विजयपुरम से कॉल आ गया तो भी खुश हो गया। बागमत जी
0: जी, और दिन कैसा गुजर रहा है आपका?
1: जी जी बहुत बढ़िया गुजर रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के साथ होता है और साथ में हमारा मनोरंजन होता है और हमारा जो दिनचर्या होता है, जो काम कर वो भी होता रहता है, जो जानकारियों से भरपूर कैसे मिलते रहते हैं विजय मिलते, तो बहुत अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पर हो गया वो, या फिर जो कल सुबह जैसा गया कैसा मतलब वहाँ में भरपूर जानकारी मिलते हैं और हमारे जो मनोरंजन वाला कार्यक्रम होता है, तो उनसे भी कैसे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी, और आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैं इस मौसम में आज सुनना चाहती हूँ मूवी के नाम में सूरवीर गाने के लिए आवाज़ हमारी ये याद नहीं रहेगी, तो गीत को कभी कुछ मौत होगी और मोहर रवि की आवाज़ है ये गीत।
0: जी, और किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत?
1: जी पहले तो आपके लिए रहेगा, उसके बाद में पूर्णिया जो है और सकने जिसे कुंडल जो है फाइनेंस जो है और है राकेश जी हैं, पूर्ण दरबार जी हैं, भुवनेश्वर शर्मा जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं और कैसे सिंह जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, अनिल कुमार जी हैं और
0: जी जी। तो अविनाश जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, धन्यवाद।
0: प्रस्तुत करते हैं आपका पसंद का गाना।
1: जी जी बिल्कुल, शुक्रिया।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार
0: नमस्ते। राकेश जी बात कर रहे हैं शिमला से?
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी, धन्यवाद आपका, और आपने आज मेरे पास कॉल लगा दिया और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आकाशवाणी से जब कॉल आता है।

0: क्योंकि ये अक्सर क्या होता है जब हम आकाशवाणी में कॉल करते हैं तो एक घंटे तक तो हमारा जो है दिमाग खराब हो जाता कि कब हमारा कॉल लग गया, लेकिन ये सबसे बढ़िया सिस्टम है जो आकाशवाणी से कॉल लग जाता तो बहुत अलग से खुशी महसूस होती
1: है। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया आप शिमला से बात कर रहे हैं, तो शिमला प्रसिद्ध टूरिज्म प्लेस है, तो वहाँ की कुछ जगहों के बारे में बताइए जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं, कुछ पर्यटक स्थल।
0: जी, पर्यटक स्थल शिमला में काफी जगह है, जैसे माल रोड हो गया और रिज मैदान हो गया और सिकंदरी रेंज है, वहाँ जो है फिल्में भी बनती हैं और हिमाचली जो है स्थानीय जो सिंगर जो है अपनी शूटिंग देते हैं। और जो अगर हरियाली देखनी है तो शिमला जिला का एक कोटखाई क्षेत्र है जहाँ जो है पूरे बाग बगीचे से सजा हुआ है और वहाँ जो है एप्पल जो है सेब की तरह तरह के पेड़ लगाए जाते हैं और देवदार की लकड़ियाँ जो होती है हमारे प्रदेश में होती हैं। और ऐसे जो है चिड़ियाघर भी सभी जो है अच्छे हैं, पुपरी जो है पुपरी भी मशहूर है, कुल्लू मनाली भी मशहूर है, ये जो बर्फ बर्फबारी होती है। और लॉस पीति में तो क्या बोलते क्या कहना हुआ तो 12 महीने तो बर्फ रहती है।
1: जी, बहुत खूबसूरत प्लेस है आपका।
0: जी,
1: राकेश जी, आज इस कार्यक्रम में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: आज मुझे गाना सुना है राजा मूवी का आंख मिलाते डर लगता है।
1: जी, और किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत?
0: सबसे पहले तो आपको ये गाना डेडिकेटेगा पूरी आकाशवाणी विजयपुरम की टीम को।
1: जी,
0: स्कूल लाइन से है पूर्णिमा जी है, सत्यनु विष्णु कुंड है, मोनिका जी है और महाराष्ट्र से तनुश्री सुरभि है और धर्मवीर जी है और अविनाश तेली का कॉल पहले ही आ चुका है। तो भगवान सिंह परमार है, रमेश प्रजापति है, राम नरेश गंजर है और अमल बसमतारी और विमल बसमतारी और पुष्कर भाई सुन रहे आपको और गोल्डी भाई हिमाचल कांगड़ा से सुन रहे हैं और तमाम सुनने वाले श्रोता है संदीप मकर जलंधर पंजाब से वो भी आपको सुन रहे हैं, सभी श्रोता के साथ गाना डेडिकेट रहेगा।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम प्रस्तुत करते हैं आपका पसंद का गाना।
0: जी, धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते, मंगीलाल जी मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं।
1: हाँ, भाई साहब, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं
1: सर जी,
0: आप?
1: आपको आपको भी धन्यवाद।

0: जो आज आपने फोन किया मेरे को बहुत खुशी हो रही है। बहुत महीने बाद आज फोन आया है।
1: जी, मंगीलाल जी,
0: सर
1: क्या
0: जी हम
1: जी जी
0: हाँ सर जी हम किसान हैं और खेती किसानी करते हैं सर जी।
1: जी जी और गाने सुनते हैं आप?
0: हाँ रेडियो तो बहुत सालों से बराबर सुनते आ रहा है, क्योंकि रेडियो सुनना इंसान को बहुत जरूरी है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है सर जिससे क्या है शिक्षा सूचना मनोरंजन सभी बातों से अवगत कराता है।
1: जी जी बिल्कुल। और आज जैसे कि आपने बताया आप रेडियो सुनते हैं, कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है?
0: सर जी वैसे तो ये फोन इन प्रोग्राम भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें एक खासियत है कि हमारे जो मनपसंद गाने होते हैं ना वो सुनने को मिल जाते हैं।
1: जी
0: और दूसरी बात और भी समाचार भी सुनते हैं, वो भी जरूरी है इंसान को, क्या हो रहा है इस भारत के अंदर। और तीसरी बात ये है कि हम खेती किसानी करते हैं तो हर केंद्र से खेती किसानी का भी कार्यक्रम आता है,
1: जी जी
0: सुनना जरूरी है। उसी के माध्यम से खेती करना, फालतू ज्यादा खाद बीज नहीं डालना, समय समय पर डालना है, तो
1: जी
0: सभी चीज फायदेमंद है। रेडियो सुनना बहुत जरूरी।
1: जी जी मंगीलाल जी, इस कार्यक्रम में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मूवी का नाम रहेगा बंदनी।
1: और किन के साथ सुनना चाहेंगे आप ये गीत?
0: भाई साहब मेरे मित्र हैं नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, और हमारे मित्र हैं वैशाली बिहार से डॉक्टर सितारे जी,
1: जी,
0: और त्रिपुरा से हैं आशुतोष जी, बहन हमारी संगीता देवनाथ जी, और तमाम सभी जो भी सुन रहे हैं लाइव इस कार्यक्रम को उनको डेडिकेट रहेगा।
1: बिल्कुल। तो मंगीलाल जी, प्रस्तुत करते हैं हम आपका पसंद का गीत। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।

0: श्रोताओं, कुछ और दोस्तों से हम जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में, और हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ। चलिए बात करते हैं हमारे और भी दोस्तों के साथ। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड
0: जी, हितेंद्र दास जी आसाम से बात कर रहे हैं।
1: हाँ सर जी, मैं हितेंद्र दास बोल रहा हूँ आसाम से।
0: जी हितेंद्र दास जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप?
1: मैं प्राइवेट पढ़ाता हूँ और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ
0: जी। और आपके पसंदीदा कार्य क्या है, मतलब खाली समय आप क्या करना पसंद करते हैं?
1: सिर्फ आकाशवाणी सुनना।
0: जी जी, कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है?
1: सबसे ज़्यादा मुझे तो हेलो डियर फ्रेंड मतलब रिक्वेस्ट प्रोग्राम।
0: जी, और आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज गाना सुना दीजिए, कहर चले हम फिदा, और मूवी का नाम है हकीकत।
0: जी जी, और किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत?
1: डेडिकेशन है, पहले तो आकाशवाणी विजयपुरम पर सभी आरजेस और स्टाफ मेंबर को, और बाद में माय फ्रेंड अमोल, विमोल, रमेश, बाइकन मुंडा, मीनाल अहमेद, दुर्गेश नगनपुरी, शिवा गोप, और त्रिपुरा से अविनाश तेली, और अभी जो सुन रहा है आकाशवाणी विजयपुरम लाइव, सबको लेके ये गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी जी, हितेंद्र दास जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम प्रस्तुत करते हैं आपका पसंद का गाना।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: केसरी जी बात कर रहे हैं भोपाल से।
1: हाँ जी, बैरसिया जिला भोपाल से केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर।
0: जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: जो आपने आज ये कॉल किया।
0: जी, वहाँ के मौसम के बारे बताइए, किस तरह का मौसम चल रहा है इस वक्त भोपाल में?
1: मौसम सर बढ़िया है, अभी तो खुशनुमा, पर बारिश रुकी हुई है और बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन ना के बराबर।
0: जी, और आपके हॉबीज़ क्या हैं?
1: मैं सर आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और प्लस में खेती भी है सर गांव पर।
0: जी, और रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ रेडियो सुनते हैं सर, पहले फोन इन कार्यक्रम होता था और अब फोन आउट कर दिया लगभग 5-6 महीने से, तो
0: जी
1: बढ़िया कार्यक्रम है। पहले जाकर सर प्रस्तुत करते थे वो कार्यक्रम, और भी बहुत सारे अनाउंसर आ रहे थे, सभी अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करते थे। अब ये सुविधा हो गई है कि कॉल लगाने में परेशानी नहीं होती, कभी महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में कॉल आ जाती है तो बात हो जाती है।
0: जी, और आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज आप सुनवा दीजिएगा सर, रक्षाबंधन करीबी है, तो रेशम की डोर मूवी से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है।
0: जी, और किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत?
1: ये हमारे रामबाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, मांगीलाल जी के पास अभी कॉल लगी गई थी आपकी, उनसे उनका फोन सुना हमने,
0: जी
1: बहुत अच्छा लगा। और पूर्णिमा जी हैं स्कूल लाइन विजयपुरम से, और संगीता जी हैं त्रिपुरा से, अविनाश जी हैं आशुतोष जी हैं, तो धर्मवीर जी हैं दिल्ली से, और जितने भी लायक सुंदर है सबके लिए है।
0: जी जी
1: भगवान सिंह परमार जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं।
0: जी केसरी जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पेश करते हैं आपका पसंद का गाना।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपकी जो सहभागी दीदी हैं वो भी, उनके लिए भी धन्यवाद।
0: जी।

हेलो डियर फ्रेंड, हेलो हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड। श्रोताओं, लगता है इस वक्त हमारी बात हमारी दोस्त से नहीं हो पा रही है। तब तक के लिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते। सप्तमी जी बात कर रही हैं शादीपुर श्री विजयपुरम से।
1: जी, मेरा नाम है सप्तमी विष्णु कुंडू। मैं शादीपुर विजयपुरम से बात कर रही हूँ सर। थैंक
0: जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: यू थैंक यू। मैं तो बहुत खुश भी हूँ और मैं आज बिलीव नहीं होता जो आज का दिन मुझे कॉल आया, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज है। और सामने रक्षाबंधन है और मेरा प्यारे भाई लोग जो मुझे याद करते हैं, मैं दिल से उन लोगों को याद करती हूँ। जो एक बार मुझे रक्षाबंधन में ये मौका मिले मैं उस लोग का नाम ले लूँ, और खास करके आप लोग के लिए,
0: जी जी बिल्कुल।
1: क्योंकि आप लोग जो ऐसे एक बंधन जोड़ दिया हम लोग का साथ, ये जन्म से नहीं और ये आपको कभी नहीं, ये सिर्फ एहसास और सुनने का थ्रू से जो एक भाई बहन का रिश्ता बना है, तो वो जो होता है वो शुक्रिया भगवान के पहले करना चाहिए। लेकिन यही, इससे पहले मैं विजयपुरम उनको करना चाहूंगी, क्योंकि ये आकाशवाणी से हम लोग को रिश्ता मिला जो एक बहुत दिल का हमेशा करीब रहता है। कभी
0: जी
1: भी
0: जी
1: किसी का नाम आए ना आए, लेकिन जब भी रेडियो में प्रोग्राम होता है सबको एहसास रहता है जो ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा दोस्त है और ये मेरा हम लोग का सार है, मैडम है। तो वो जो एहसास का एक बंधन है वो हमेशा भगवान से मैं दुआ करूँ जो वो रहना चाहिए।
0: जी सप्तमी जी, आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे सुनना दीजिए बंधन फिल्म का गाना जो सानू जी ने गाया, ये बंधन कैसा बंधन है, दिलों का नाता है। तो ये गाना मैं जल्दी जल्दी दो तीन मेरा भाइयों का नाम ले लूंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
0: जी
1: सबसे पहले आप है,
0: जी
1: फिर
0: जी
1: जाकिस्ता है, फिर आकाशवाणी का जितना मेरा भाई बहन है सबका है, और मेरा खास करके दो तीन भाई लोग है, जैसे है अनूप जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है, गणेश दास जी भी है, संतोष जी है, प्रेमजीत भाई है, केशव जी है, और बाकी जितना सुनने वाला है सबके लिए ये प्यारा सा गाना मेरे तरफ से, और मेरा भाई बहन लोग को भी दिए दीजिए।
0: जी जी जी
1: थैंक
0: जी
1: यू सर मुझे कॉल करने के
0: जी
1: लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सप्तमी जी। हम प्रस्तुत करते हैं आपका पसंद का गाना।
1: थैंक यू।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

दोस्तों, कभी इश्क दुआ बन जाता है, कभी इबादत, कभी लफ्ज़ों से परी होती है मोहब्बत। जब दिल अपनी ज़िद छोड़ देता है, तो हर सांस सिर्फ सजदे बन जाती है।

अल्फाज कभी कभी साथ छोड़ देते हैं, नज़रें ही तब दिल का पता बताती हैं। जब बात कहनी हो बिना कहे, वही आँखों की मस्ती कह जाती है।

कभी नूर आसमान से नहीं उतरता, कभी किसी की गली ही चांद बन जाती है, जहाँ एक झलक पे दिल ठहर जाए और रात भी अपनी रोशनी भूल जाती है।

दूरियों ने फासला ज़रूर बढ़ा दिया, पर इश्क की गहराई कम ना हुई। हर खामोश रात में एक ही पुकार है, वे माही अब तू ही याद आई है।

कभी कोई धुन दिल के बहुत करीब आ जाती है, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। जब मन अपनी ही दुनिया में खोने लगे तो एक छोटी सी धुन भी साथी बन जाती है।

0: 100.9 MHz पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।
1: वे सहेलियां निराश ना हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का STD कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 4002462, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का STD कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार।
2: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: दोस्तों नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
2: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हों, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं? क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था, बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर

पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला, पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थीं। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया, गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है, एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे। पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे।

क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहाँ से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहाँ गए। वहाँ से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के एक माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहाँ तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले। हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

0: कहाँ तक पहुँची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी। ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है?
1: हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है। बाढ़, ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका वश चलता है, ड्राइवर बोला।
0: अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था, धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो।
1: मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिए। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं, उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला।
0: अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है।
1: अच्छा, कैसे?
0: अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह।
1: वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं।
0: हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन दो तीन महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर

ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है और चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़ चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे। 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हरेक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं, समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है। ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहाँ तेज बारिश होगी वहाँ रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुप

0: भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूं, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ, ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे ना भैया?
1: जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें। थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है।
0: मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी ही क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है। जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी।
1: चाय पियोगे?
0: जी मैडम, आप?
1: हम भी पी लेंगे।
0: मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई। क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था। टेबल लैंप जल रही थी। साइड की रैक में किताबें रखी थी। चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं। दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाचे से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास, चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं। ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था। दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे।

0: थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा आप कैसी तबीयत है आपकी?
1: ठीक ही है।
0: चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे हैं?
1: किस तरह की बात?
0: आपकी तबीयत को लेकर।
1: अरे नहीं नहीं, मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है।
0: नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? फिर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहाँ 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा?

बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहाँ केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं। देखेंगे, बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूँ कि वहाँ खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो, बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम्ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था, और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एक टक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: खेतों की हरियाली, फसलों की लाली और हमारे देश के किसानों की खुशहाली। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि साथियों, हम सब जानते हैं कि किसी भी शुभ काम और एक सफल की शुरुआत हमेशा एक अच्छे और नेक विचार से होती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर और अनमोल विचार से करते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली तो हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। किसान भाइयों, आप समझ ही गए होंगे कि समय पर किया गया कार्य जरूर सफलता दिलाती है। तो किसान साथियों, इस नेक विचार के बाद अब बारी है आज के प्रश्न की। और आज का प्रश्न है, ब्रुसिलोसिस पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है या नहीं। साथियों, इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं, ब्रुसिलोसिस पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है या नहीं। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इसका जवाब हम कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान भाइयों, पपीता एक ऐसी फसल है जिसे हम खेती का ATAM कह सकते हैं, जहां बाकी फलदार पेड़ों को फल देने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, वहीं पपीते का पौधा लगाने के मात्र ही 8 से 10 महीने के भीतर फल देने लगता है। यानी साल खत्म होने से पहले ही आपकी जेब में मुनाफा आना शुरू हो जाता है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे द्वीपों में पपीते की खेती के संदर्भ में डॉक्टर विश्वभूषण पांडे से की गई ये बातचीत।
4: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: डॉक्टर साहब। इससे पहले कि हम पपीते की खेती के जो विभिन्न पहलू हैं इसके बारे में आपसे जानें, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे इन द्वीपों में इसकी खेती की संभावनाएं कितनी, स्कोप क्या है?
5: जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसा कि किसान भाई आप सभी लोग पपीते की खेती से भली भांति परिचित हैं
4: जी,
5: क्योंकि पपीता आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फल है और पपीते के फल में विटामिन ABCD पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें प्रोटीन, वसा,

0: फाइबर अम्ल भी पाया जाता है तथा पपीता पाचन शक्ति को भी ठीक रखता है।
1: यानी काफी पोषक फल है।
0: जी, और इसका पका फल खाने में काफी स्वादिष्ट भी होता है तथा कच्चे पपीते के फल से पपेन नामक एक पदार्थ बनाया जाता है तथा पपीते के कच्चे फल से हलवा, खीर, कोफ्ता व अचार भी बनाया जाता है जो अति स्वादिष्ट होता है, जिससे इन द्वीप समूहों में पपीते के फल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो बाजार में जब कोई सब्जी नहीं मिलती है तो पपीते के हरे फल की सब्जी भी बनाने के लिए मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार इन द्वीप समूहों में पपीते के फलों की जितनी मांग है उससे भी कई गुना फलों के पैदावार की प्रबल संभावना भी है, क्योंकि इन द्वीपों की जलवायु व मिट्टी दोनों पपीते की सफल खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है।
1: जी
0: और पपीते के फलों की उपज अभी भी काफ़ी कम है, जिसको बढ़ाने की प्रबल संभावना है।
1: अच्छा
0: और पपीते के फलों की अच्छी पैदावार के लिए पौधों व लाइन से लाइन की दूरी पर्याप्त रखें, क्योंकि
1: जी
0: किसान भाई सोचते हैं कि जितना नज़दीक उतने ज़्यादा हमारे पौधे होंगे उतनी ज़्यादा वो
1: फल मिलेंगे।
0: फल मिलेंगे, लेकिन ऐसा
1: अच्छा
0: होता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए पौधे से पौधे और
1: तो
0: लाइन
1: ये
0: से लाइन
1: जी
0: की
1: हाँ, तो ये भी
0: दूरी।
1: एक
0: जी
1: कारण है जिससे कि पैदावार
0: जी
1: यहाँ पर कम
0: जी
1: है।
0: तो पपीते की पौध के लिए अच्छी किस्म का भी चुनाव करना चाहिए
1: अच्छा
0: तथा पपीते की फसल लगाने के साथ साथ समय समय पर उसमें खाद एवं उर्वरकों का भी प्रयोग करें और कीड़ों और बीमारियों से रोकथाम के लिए समय समय पर दवाइयों का प्रयोग करें, तो इन द्वीपों में पपीते की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार लेने की प्रबल संभावना है।
1: बिल्कुल। तो
0: जी
1: डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर पपीते की मांग अच्छी है, भाव भी, लेकिन जो पैदावार में जो कुछ समस्याएं हैं, आपने उसका जिक्र किया, तो इसमें आपने किस्म का भी
0: जी
1: जिक्र
0: जी
1: किया
0: जी
1: है। तो यहाँ पर अगर किसान भाई पपीते की व्यावसायिक तौर पर अच्छी खेती करना चाहें तो कौन सी किस्में उन्हें चुननी होगी?
0: अच्छा, जहाँ तक अच्छी किस्मों का सवाल है, इन द्वीपों में जो है हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू, सोलो, कोयम्बटूर एक व कोयम्बटूर दो किस्में जो है काफ़ी अच्छी पैदावार देती हैं।
1: इन किस्मों का प्रयोग किसान भाई कर
0: जी
1: सकते
0: जी
1: हैं। डॉक्टर साहब, पपीते की जो पौध है उसे कब तैयार करें, कैसे तैयार करें, इस बारे में भी जरा बताएं।
0: जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पौध बहुत ही आवश्यक चीज़ है
1: वो
0: इसके
1: कहते भी
0: लिए।
1: है ना कि जो
0: जी
1: पौध, किसी भी फसल की पौध जो माँ के गर्भ
0: जी
1: के समान होती है,
0: जी
1: पौध
0: जी
1: अच्छी है तो फसल
0: जी
1: अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, पपीते की जो फसल होती है,
0: जी
1: जैसी मुख्य खेत में जो रोपाई की जहाँ तक बात है,
0: जी
1: उसे कब करना चाहिए और रोपाई करते वक्त किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
0: जी ऐसा है, जो पपीते की नई फसल के लिए उपयुक्त समय अभी आ गया है।
1: जी हाँ
0: अपने ढालू जमीन की झाड़ियाँ वगैरह साफ करके पौधे से पौधे व पंख से पंख की दूरी जो है 2.5 मीटर रखते हैं। ढालू जमीन इसलिए चुनाव करते हैं कि उसमें पानी नहीं रुकेगा।
1: जी
0: किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान दें कि पपीते की पौध जो है लगाने के लिए हमेशा ऊंची जमीन का चुनाव करें।
1: यानी पानी जमने वाली
0: जी
1: जमीन नहीं
0: जी
1: होनी चाहिए।
0: जिसमें बरसात के मौसम में भी पानी रुकने की संभावना न हो।
1: जी हाँ
0: पपीते के कुछ किस्मों में नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर आते हैं, तो ऐसी किस्मों को क्या करते हैं कि एक गड्ढे में 2-3 पौध लगाते हैं, तो 6-7 महीने में पता चल जाता है कि कितने नर फूल हैं कितने मादा हैं। तो गड्ढे में एक मादा फूल को पौधे को
1: पौधे को रख
0: छोड़कर
1: दें।
0: बाकी जो है नर को निकाल दें। पूरी खेती में क्या करते हैं कि करीब 20% पूरे प्लाट में 20% नर पौधे छोड़ते हैं।
1: अच्छा, पूरी जितनी रोपाई
0: पूरी जो
1: की है।
0: रोपाई होती है उसमें 20% नर पौधे होने चाहिए। उभय लिंगी अगर जाति के पौधे हैं या किस्म जब प्रयोग की गई है तो उसमें की समस्या
1: समस्या
0: नहीं
1: नहीं है।
0: होती है।
1: अच्छा,
0: उसके लिए क्या करते हैं कि प्रति गड्ढे एक ही
1: एक
0: पौध
1: पौधा,
0: लगाते
1: यानी
0: हैं।
1: उस पौधे में
0: जी
1: नर और मादा दोनों फूल होते हैं,
0: दोनों फूल
1: तो फल
0: होते
1: की कोई
0: हैं।
1: समस्या
0: हाँ,
1: नहीं है।
0: नहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस जैसे किस्में हैं, जैसे सोलो है, हनी ड्यू है, कोयम्बटूर टू है, ये सभी पौधे जो है मादा एवं उभयलिंगी निकलते हैं, तो इसलिए इनको एक गड्ढे में केवल एक पौधा ही लगाया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें
1: अच्छा,
0: किसान
1: यानी
0: भाई।
1: ऐसी किस्मों को अगर किसान भाई चुने तो वो पहली वाली समस्या आएगी ही नहीं, और ये तो उन्नत किस्में हैं।
0: जी ये तो उन्नत।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि जो अच्छी पैदावार है इसके लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है,
0: जी
1: तो ये कितना होना चाहिए, इस बारे में ज़रा विस्तार से बताएं।
0: तो पौध लगाने के करीब 1 माह बाद 90 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 140 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है प्रति गड्ढे में पौधे से दूर 1.5 फीट की दूरी में मिला, और फिर 1 माह बाद पुनः जो है केवल 100 ग्राम यूरिया पौधे के चारों तरफ 2 फीट के घेरे में मिट्टी में मिला दें। देखें कि पौधे के नज़दीक में खाद नहीं, पौधा जल जाएगा।
1: अच्छा,
0: दूरी बराबर 2 फीट की दूरी से चारों तरफ सर्किल में मिला दें मिट्टी में, और जब 4-5 महीने का पौधा हो जाए तो पुनः जो है सड़ी हुई गोबर की खाद 2-2 टोकरी प्रति गड्ढा जो है दे के अच्छी तरह तक मिला दें। तो इतनी खाद जो है करीब 8-9 महीने का जब पौधा होता है तो उसमें जो है दे दें, इतना जो है पर्याप्त होता है खाद इसके
1: अच्छा।
0: लिए।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके बाद बारी आती है पौधों की देखभाल की,
0: जी
1: इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जैसा है कि पपीते की पौध जो प्रतिरोपण जब कर देते हैं, घास वगैरह
1: अच्छा,
0: गड्ढे में
1: खरपतवार
0: निकल,
1: वगैरह नहीं
0: खरपतवार
1: होना
0: निकल,
1: चाहिए।
0: उसको समय समय पर खरपतवार जो है निकालते रहें। अगर सूखा का मौसम है, बरसात नहीं हो रही है।

0: तो वीकली इंटरवल एक सप्ताह के अंतर पर उसमें सिंचाई की व्यवस्था कर दें, सिंचाई
1: अच्छा
0: कर दें,
1: जी
0: और गर्मी से बचाने के लिए पौध को घास फूस की मल्च कर दें, पौधे के चारों तरफ मल्च कर दें, तो जो भी पानी देंगे किसान भाई वो नमी बराबर बनी
1: यानी घास फूस
0: रहेगी,
1: की जो परत जमा देते
0: परत
1: हैं
0: जमा
1: जो।
0: देते हैं तो नमी बना। तीसरी चीज़ सॉयल मल्चिंग भी कर सकते हैं, मतलब गर्मी के दिन में जो है अगर पानी का साधन किसान भाई के पास नहीं है तो हल्का सा खुदाई कर दें सॉयल की, करीब 2 इंच सॉयल
1: ऊपर
0: खुदाई
1: की तोड़
0: करके
1: दें।
0: छोड़ दें, तो टेम्परेचर ऊपर से जो धूप ताप नीचे नहीं जाएगा, नमी नीचे की बनी रहेगी।
1: अच्छी बात है। तो ये
0: जी
1: काम किसान भाई अभी कर सकते हैं अगर उनके
0: जी
1: पास थोड़े बड़े पौधे हैं
0: पौधे
1: तो।
0: हों, और समय समय पर जो है देखें अगर कीड़े मकोड़ों का अगर उसमें
1: प्रकोप
0: प्रकोप
1: है।
0: है या बीमारियों का तो उसकी दवाई वगैरह थोड़ा छिड़काव कर दें तो बहुत अच्छी फसल ले सकते
1: अच्छी
0: हैं
1: बात
0: किसान
1: है।
0: भाई।
1: तो हमारे इन द्वीपों में जहाँ तक कीड़े और बीमारियों का सवाल है तो
0: जी
1: मोटे तौर पर कौन कौन से कीड़े और बीमारियाँ होती हैं?
0: जहाँ तक पपीते की फसल में जो है कीड़ों और बीमारियों का सवाल है, एक लाल मकड़ी जो है कीड़ा होता है जो पपीते की फसल का प्रमुख कीड़ा है, शत्रु कहा जाता है, जो पके फल एवं पत्तियों पर पाए जाते हैं,
1: अच्छा
0: इनकी रोकथाम के लिए किसान भाई जो है चूने व गंधक का घोल बना करके वो छिड़काव।
1: अच्छा
0: और जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, पपीते के पौधों पर कालरा नाट की बीमारी लगती है, इसमें पौधे के तने का वह भाग जो जमीन को छूता है वह सड़ जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए जल निकास की व्यवस्था करें, क्योंकि वाटर लॉगिंग से ही ये बीमारी होती है।
1: पानी ठहरना नहीं
0: जी
1: चाहिए।
0: नर्सरी में भी बीमारी होती है,
1: अच्छा
0: तो पानी ठहरने से, और बोर्डेक्स मिश्रण का भी छिड़काव कर सकते हैं किसान भाई। और एंथ्रेक्नोज एक बीमारी होती है जिसमें पत्तियां व फल दोनों प्रभावित होते हैं तथा फल पकने से पहले ही जो है गिर जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई जो है बोर्डेक्स मिश्रण का छिड़काव करें। और इसमें एक और बीमारी लगती है पाउडरी मिल्डू,
1: पत्तियों पर होती है
0: पत्तियों
1: जी।
0: पर होती है, और इसकी रोकथाम के लिए जो है किसान भाई क्या करें कि 2 ग्राम ब्लोटॉक्स प्रति लीटर पानी में घोल बना करके
1: छिड़काव
0: छिड़काव
1: कर
0: करें।
1: सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: तो ये सब जो बीमारियां हैं और जो
0: जी
1: कीड़े, एक कीड़े का आपने जिक्र किया, इनकी रोकथाम करने से जो फसल सुरक्षा का जो समुचित उपाय वो हो
0: यहाँ पर
1: सकता है।
0: वैसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े और बीमारियों का आक्रमण पपीते के
1: फसल
0: फसल
1: में
0: में देखा
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: गया है,
1: चलिए
0: बहुत मामूली होता है, जिसके लिए ये तो पर्याप्त है उपाय।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, अब आखिर में सवाल ये उठता है कि पपीते के फल जो है, तुड़ाई करते वक्त किसान भाई किन किन बातों पर ध्यान दें और कब
0: जी ये
1: तोड़ें?
0: तो बहुत ही उचित प्रश्न है आपका। और जब पपीते का लगभग 10-12 महीने का जब पौधा होता है तो फल देने लगता है, दस
1: जी
0: बारह महीने में फलत में आ जाता है, तो जो आधा पका हो फल तो उसी समय उसको तोड़कर घर में रख कर पकाएं, और इस प्रकार जो है एक पेड़ से 15-20 फल मिल जाते हैं
1: अच्छा
0: जिसका औसतन उपज करीब 800 ग्राम से 2 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम तक होता है, तो एक पौधे से प्रतिवर्ष जो है 60 से 110 ग्राम तक पपीन भी निकाल सकते हैं।
1: अच्छा एक
0: जी जो कच्चे
1: फल
0: पपीन
1: से निकाल
0: निकालते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं जी।
0: जी और एक हेक्टेयर से करीब किसान भाई जो है इस पर 43,000 रुपये तक का जो है शुभ लाभ जो है कमा सकते
1: फल
0: हैं।
1: और पपेन वगैरह सबको
0: हाँ
1: मिलाकर।
0: और ये मतलब वो पूरा जो उनके खेती में एक हेक्टेयर के लिए जो खर्च आता है उस खर्च को निकाल के जो है वो 43,000 रुपये उनका नेट प्रॉफिट एक हेक्टेयर में
1: हो
0: हो
1: सकता है,
0: सकता है।
1: बशर्ते कि जो बताई गई बातें हैं उन पर ध्यान दें
0: जी
1: और
0: जी
1: एक
0: जी
1: वैज्ञानिक तरीके से,
0: जी
1: उन्नत
0: जी
1: तरीके से खेती
0: जी
1: करें।
0: जी
1: तो साथियों, अभी आपको डॉक्टर विश्वभूषण पांडे ने पपीते की खेती के जो विभिन्न पहलू हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी। तो डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, इतनी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।

0: माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: साथियों, बातचीत का यह सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अब वक्त हो चला है थोड़ा गुनगुनाने का और तरोताजा होने का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं एक बेहद प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। उम्मीद है इस मधुर संगीत ने आपके मन को तरोताजा कर दिया होगा।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: आइए सुनते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श।
2: साथियों, अगले कुछ दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा कुल वर्षा लगभग 75 मिलीमीटर रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता

85 से 87% तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 73 से 77% के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 23 से 29 किलोमीटर घंटा रहने तथा हवा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। आकाश में बादल छाए रहने तथा बादल युक्त रहने की संभावना है। किसान भाइयों, मौसम के मुताबिक आप कृषि पर जो कार्य करेंगे, आइए उस पर भी हम आपको बता दें। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। किसानों को वर्षा रहित अवधि में कृषि कार्य करने तथा जल भराव के बचाव के लिए खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। वर्षा से ठीक पहले या वर्षा के दौरान उर्वरकों एवं पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग न करें। आर्द्र मौसम में कीट एवं रोगों के प्रकोप की नियमित निगरानी करें। कटाई की गई उपज एवं पशु आहार को स्वच्छ रखें। सूखे और हवादार स्थान पर रखें। भारी वर्षा एवं मेघ गर्जन के दौरान पशुओं को सुरक्षित आश्रय में रखें। फसल विशिष्ट सलाह जो दी गई है वो किसान साथियों को बताया गया है कि धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर स्थिर जल की गहराई बनाए रखें तथा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के बाद पर अनुशंसित नाइट्रोजन की मात्रा का 1/4 भाग डालें। विशेष रूप से फसल की प्रारंभिक अवस्था में धान के खेतों का नियमित निरीक्षण कर कीट एवं रोगों के प्रकोप की निगरानी करें। बागवानी करने

0: तथा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के बाद पर अनुशंसित नाइट्रोजन की मात्रा का 1/4 भाग डालें। विशेष रूप से फसल की प्रारंभिक अवस्था में धान के खेतों का नियमित निरीक्षण कर कीट एवं रोगों के प्रकोप की निगरानी करें। बागवानी करने वाले किसानों को बताया जाता है, अदरक और हल्दी के खेतों में जहां पिछले हफ्ते हुई बारिश से मिट्टी हट गई है, वहां पौधों के आधार को ठीक करने और बाहर निकली हुई जड़ों को ढकने के लिए मिट्टी चढ़ाने का काम करें। अतिरिक्त पानी निकालने और ऊंची क्यारियों को और नुकसान से बचाने के लिए पानी की सही निकासी का इंतजाम करें। पशुपालन किसानों को सलाह दी जाती है, पशुओं में मद चक्र के लक्षणों की नियमित निगरानी करें तथा देखे गए मद के लक्षणों के आधार पर कृत्रिम गर्भाधान प्रातः या सायंकाल के समय करें। दोपहर के समय कृत्रिम गर्भाधान करने से बचें। मछली पालन किसानों को सलाह दी गई है कि वर्षा के बाद तालाब के पानी के पीएच की निगरानी करें। यदि पीएच 6.5 से कम हो जाए तो तालाब के पानी का पीएच स्तर बनाए रखने के लिए धूप वाले मौसम में कृषि चूना 150 से 200 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से डालें।
1: अभी आपने मौसम से संबंधित कृषि परामर्श सुना।
2: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: साथियों, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे प्रश्न पूछा था कि ब्रुसिलोसिस पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है या नहीं, और इस प्रश्न का सही उत्तर है, ब्रुसिलोसिस पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है। ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।

0: 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार तरंगणी।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगणी। इस अंक में 80वां स्वतंत्रता दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, केंद्रीय जल आयोग और जेम्स ऑफ इंडिया

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: साथियों, अब हमारा यह खूबसूरत सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। समय की अपनी सीमाएं हैं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अब इस दोस्त रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 80वां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। हर घर तिरंगा है, मन तिरंगा है और देश उत्साह तथा उमंग के साथ नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। लाल किले पर पहली बार पूरे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज उन महान सपूतों का स्मरण कर रहा है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश को स्वतंत्र कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपने कार्य, संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि युवा हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक खेल का जिक्र करते हुए कहा,
1: स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के कोने कोने से प्रतिभाएं ढूंढने के लिए टैलेंट हंट अभियान चलाया जाएगा और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सरकार फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद पुलिस, नौसेना और सेना के बैंड की धुनों के बीच राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। उपराज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। समारोह के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चयनित व्यक्तियों को उपराज्यपाल के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में द्वीप समूह में चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि द्वीप विकास एजेंसी परियोजना के तहत 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में हुआ है। ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पावर प्लांट और टाउनशिप की स्थापना प्रस्तावित है। कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए उड़ान के तहत श्री विजयपुरम स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड के बीच सी प्लेन सेवाओं के लिए पिछले साल लेटर ऑफ इंडेंट दे दिया गया है। उन्होंने कहा, कैंबल बे के यात्री टर्मिनल का निर्माण भी अंतिम चरण में है। द्वीपों में पर्यटकों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में 8 लाख से ज्यादा पर्यटकों का द्वीपों में आगमन हुआ,

0: जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इस वर्ष 2 और 3 मई को राधानगर बीच पर समुद्र के नीचे 2400 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तथा 22.3 मीटर ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर 2 स्कूबा डाइविंग गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए जाने की बात भी कही। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान की जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगाथन सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इससे पहले उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल पहुंचकर अमर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। द्वीप समूह के 3 जिलों में भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर द्वीपों के विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने भी इस अवसर पर द्वीपवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता, एकता और देशभक्ति की भावना को गर्व के साथ याद करते हुए एक सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने तथा अपने द्वीपों एवं राष्ट्र के प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस और संघर्ष को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि विभाजन के उस दौर ने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, लोगों ने अपनों को खोया और असहनीय पीड़ा सही। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश को सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने के संकल्प को और दृढ़ करे। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने संस्कृत का एक उदाहरण भी साझा किया और विभाजन की भयावह परिस्थितियों से उभरकर राष्ट्र की प्रगति में अमूल्य योगदान देने वाले सभी देशवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने साहस और संकल्प से साबित किया कि विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौन रैली और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये रैली मिडिल पॉइंट स्थित भाजपा भवन से शुरू होकर तिरंगा पार्क में संपन्न हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी सहित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले तथा विस्थापन का दंश झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। तिरंगा पार्क में आयोजित प्रदर्शनी में वर्ष 1947 के विभाजन से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम, बंगाल और असम की विभाजन सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र, उस दौर के समाचार पत्रों की रिपोर्ट तथा विस्थापन और पलायन से संबंधित ऐतिहासिक चित्र प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि विभाजन की त्रासदी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और इतिहास से सीख लेने के उद्देश्य से हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। अंडमान निकोबार भाजपा इकाई ने द्वीपवासियों से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समक्ष मांगे रखी है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने पंचायतों और श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार बहाल करने, पंचायतों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने तथा वर्ष 2012 की अनुदान अधिसूचना को पुनः लागू करने की मांग की। उन्होंने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए डोमिसाइल कानून लागू करने और पंचायतों को कुल योजना राशि का कम से कम 30% आवंटित करने का भी आग्रह किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में जीवी पंत अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने, एनिम्स को एम्स के अधीन लाने तथा गंभीर मरीजों के लिए सस्ती हवाई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गयी। आयुष्मान भारत के तहत मुख्य भूमि के अस्पतालों तक मरीजों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा देने का भी सुझाव दिया गया। पेयजल संकट के समाधान के लिए धन्नीखाड़ी बांध के पास अतिरिक्त जल भंडारण की व्यवस्था और अलग जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं ग्रेट निकोबार परियोजना से प्रभावित कैंबल बे के लोगों को भूमि और कृषि पौधों का उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा,
1: माननीय अमित शाह जी आए तो हमने 11 पॉइंट, उस पॉइंट लोकल भी मुद्दे थे कि जो होने वाले हैं, पूरा अंडमान निकोबार की जनसंख्या उन पर निर्भर है। और लोखंडे जी ने, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार ने बताया भी था, नए जनरेटर सेट खरीदे गए, परमानेंट समाधान था हमारा नया पावर हाउस बनके तैयार हो, जिससे साउथ अंडमान से लेकर के श्री विजयपुरम से लेकर के डिगलीपुर तक पावर का समस्या का समाधान हो। 50 मेगावाट LNG गैस प्लांट

0: होप टाउन में, उस पर काम एनटीपीसी के द्वारा बहुत जोर तरीके से चल रहा है। एक गुप्ता पाड़ा में डैम बनने जा रहा है और एक मक्का पहाड़ में। और अगर 2 साल लगातार बारिश नहीं भी आई तब भी हमको डेली पानी मिलेगा, ऐसा 18 महीने के अंदर में अंडमान में होने जा रहा है।
1: अंडमान निकोबार प्रशासन और केंद्रीय जल आयोग CWC के बीच बर्मानाला और गुप्तापाड़ा में 2 बड़े जलाशयों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें गुप्तापाड़ा में 4000 मिलियन लीटर और बर्मानाला के मक्का पहाड़ में 9000 मिलियन लीटर क्षमता के जलाशय प्रस्तावित हैं। प्रशासन के अनुसार तेजी से बदलती जलवायु और बढ़ते विकास के कारण श्रीविजयपुरम में जल संकट को देखते हुए ये परियोजनाएं जल सुरक्षा मजबूत करने में महत्वपूर्ण होंगी। CWC अगले 18 महीनों में DPR तैयार करेगा। आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं से करीब 13000 मिलियन लीटर अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता विकसित होगी, जो मौजूदा धनीखाड़ी बांध की शुद्ध क्षमता से 1.5 गुने से अधिक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के रचनात्मक क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर के डिजिटल रचनाकारों की पहचान करने, उन्हें निखारने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत की है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। यह चैलेंज में द्वीपों के 3 जिलों के रचनाकारों को जनजातीय संस्कृति, पर्यावरण पर्यटन, स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक शिल्प और सामुदायिक उपलब्धियों सहित एमराल्ड आइलेस की अनूठी पहचान प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रविष्टियां 31 अगस्त तक वेब्स पोर्टल पर स्वीकार की जाएंगी। इसके तहत प्रतिभागियों को 1 से 3 मिनट की मूल डिजिटल सामग्री पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। विजेताओं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। इस अवसर पर माई भारत के संयुक्त निदेशक सुकरंजन विश्वास ने जेम्स ऑफ इंडिया के बारे में बताते हुए कहा,
2: बात ऐसे लेके अभी तक हमारे पास 115 आदमी नाम रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन उसे 30 जन डॉक्यूमेंट सबमिट किया। इसमें करना क्या होगा? यहाँ के हिस्टोरिकल जो एविडेंस है जो अभी तक आपको उसमें आया नहीं है, मेन स्ट्रीम लाइन में आया नहीं, इस तरह कुछ चीज आइडिया जो आपका गांव में हो, आपके शहर में हो, आपके ब्लॉक में हो, आपके घर का अगल बगल में, इस तरह 2-3 मिनट की एक रील बना के आपको इसमें एक माई बात पोर्टल में जाके वेब्स बोल के एक जगह है अपलोड करना है। ये फॉर्चुनेटली है जो ऑल ओवर इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से ओनली 5 जगह में कर रहा है। एक हमारे पास 31 अगस्त हमारे पास टाइम है।
1: प्रशासन की ओर से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज पर जागरूकता सह उन्मुखीकरण कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसके तहत हाल ही में मध्य उत्तर अंडमान जिले के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में वर्चुअल जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग के स्रोत अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों को जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी दी और छात्रों से अपनी विरासत को सहेजने, दस्तावेजीकरण करने और द्वीप समूह का रत्न बनने का आह्वान किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत माई भारत श्री विजयपुरम ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा रैली आयोजित की। रैली को अंडमान लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर PVN शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय और अंडमान लॉ कॉलेज सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के करीब 130 माई भारत स्वयं सेवकों और युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। रैली का समापन ऐतिहासिक सेल्युलर जेल में हुआ, जहां युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों के बलिदान को याद किया। अंडमान निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग ने PM किसान लाभार्थियों से लंबित EKYC और बैंक खाते की आधार सीडिंग जल्द पूरी करने की अपील की है। संबंधित लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों में प्रदर्शित की गई है। EKYC PM किसान पोर्टल, मोबाइल ऐप या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से की जा सकती है, जबकि आधार सीडिंग के लिए बैंक शाखा से संपर्क करना होगा। विभाग ने कहा है कि प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर अगली किस्त रुक सकती है। वर्ष 2026-27 की वार्षिक EKYC भी समय पर पूरी करने की अपील की गई है।

इसके साथ ही समाचार तरंगणी का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार तरंगणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका अनीता क्रिकेट्टा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता पी हरि।

अभी आप समाचार तरंगनी सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 15वीं कड़ी।

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वह भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहाँ हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड, बर्तन रखने की जगह, सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दें, और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए। बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं, वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो। कोई भी कचरा और प्रयोग में ना आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चींटियाँ, मच्छर आदि पनपते हैं। और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है। इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और ये सोच परिवार के हर सदस्य के नज़रिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें

0: आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करें, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। साफ सफाई इंसान की फितरत होती है, वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझ और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें, और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई, हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं, और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर, देश, सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा, और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। With this lovely quote, this is Chetan signing off for today in Lamhe program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 15वीं कड़ी सुन रहे थे।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में आप फोन इन कार्यक्रम सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार व गौरव कान। रात्रि 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री करंट अफेयर्स कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये तो थे आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्रीटिस्ट में जानेंगे रतन जोत की खेती के बारे में 5:55 पर। सुबह 6:10 पर जलयानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा दौर शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागिनी आप सुनेंगे 7:15 पर। 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो डॉक्टर। विशेषज्ञ होंगे ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जन डॉक्टर विशाल एस नायर। विषय रहेगा जबड़ा और चेहरे की सेहत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे मेहंदी हसन और सलमा आगा। सुबह 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर आप बॉम्बे एस जयश्री का गायन सुनेंगे। सुबह 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश का आप आनंद ले पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन का समय रहेगा 11:00। 11:30 पर आप गीत अतीत कार्यक्रम सुनेंगे। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12:00 आप फिल्मी गीत सुन सकेंगे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आप नए फिल्मों के गाने सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे ताहिरा सहीद और सीमा शर्मा दोपहर 1:10 पर। 1:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा। लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा जिसमें नॉन स्टॉप म्यूजिक और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुनेंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ जिसमें सूचनाओं के अलावा आप लोकप्रिय गीत सुनेंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5:00 सुनिए तमिल कार्यक्रम। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर आप फिल्मी गीत सुनेंगे। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में आप बागवानी व फूलों की खेती से जुड़े किसान श्री जगदीश हलदार के साथ की गई बातचीत सुनेंगे। अंग्रेजी कार्यक्रम 6:30 पर श्री जितेंद्र पाल सिंह की लिखी झलकी फाइल गुम हो गई आप सुनेंगे 6:45 पर। 7:30 पर युवाणी में भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम होगा बातें मुलाकातें। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत रात 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती तथा रात्रि 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्रेयास नारायण का गायन सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेज भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट्सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।

श्रोताओं, अब मैं आपको कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल सुबह 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा दौड़ शीर्षक पर। कल सुबह 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो डॉक्टर। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर विशाल एस नायर। विषय रहेगा दांत, जबड़ा और चेहरे की सेहत। ये तो थे कल के कुछ कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के प्रमुखों से की भेंटवार्ता, युवाओं को अंतरिक्ष तकनीक से जोड़ने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में एसएसबी की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, जवानों के कल्याण को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। हवाई उड़ानों में भारी कटौती और बढ़ते किराए पर सांसद विष्णु बद्रे ने चिंता व्यक्त करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री से तत्काल हितधारक बैठक बुलाने का आग्रह किया। और डिगलीपुर में जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 पर वर्चुअल कार्यशाला आयोजित, छात्रों को वीडियो, रील और पॉडकास्ट के जरिए स्थानीय कहानियां साझा करने के लिए किया प्रेरित। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के प्रमुखों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया की प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कृषि, पशुपालन, डेयरी और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ सहयोग बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में लगातार सहयोग करती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यों में राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भूटान से लगने वाली खुली सीमाओं की सुरक्षा एसएसबी की महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसबी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के महत्व को देखते हुए क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए जाने की भी जानकारी दी।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के दौरान हुआ। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फ्रेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य डिजिटल नवाचार और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना है। इसके तहत सार्वभौमिक कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान पर भी सहयोग किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सांसद पत्र और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हवाई संपर्क में भारी कमी और बढ़ते हवाई किरायों को लेकर सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू से तत्काल उच्च स्तरीय हितधारक बैठक बुलाने का आग्रह किया है। सांसद ने कहा कि हवाई संपर्क में लगभग 42-50% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि उड़ानों में कमी और बढ़ते किराए से पर्यटन क्षेत्र पर सीधा असर पड़ रहा है। सांसद ने एयर कार्गो क्षमता घटने से मछली निर्यातकों और मछुआरों को होने वाली परेशानी का भी मुद्दा उठाया। मुख्य भूमि पर इलाज के लिए जाने वाले द्वीपवासियों की कठिनाइयों पर चिंता जताई। अंडमान निकोबार कमान ने पुलिस विभाग के सहयोग से उत्तरी अंडमान के दूरदराज और घने जंगलों वाले इलाकों में चलाया गया तलाशी अभियान ऑपरेशन फाल्कन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। संदिग्ध घुसपैठियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद यह अभियान 9 अगस्त को शुरू किया गया था। अभियान में अंडमान निकोबार कमान और पुलिस विभाग के जवानों को संयुक्त रूप से तैनात किया गया। संयुक्त अभियान के दौरान 12 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों के पास से अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। उनके खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 को लेकर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। इनका उद्देश्य छात्रों और युवाओं को डिजिटल माध्यम से द्वीपों की संस्कृति परंपराओं प्राकृतिक सुंदरता और अनकही कहानियों को सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कल डिगलीपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीतापुर में वर्चुअल जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई। पर्यटन विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्रों को चैलेंज के उद्देश्यों और इसमें मिलने वाले अवसरों की जानकारी दी गई। उन्होंने छात्रों से अपने समुदाय और द्वीपों की कहानियों को रचनात्मक तरीकों से प्रस्तुत करने का आह्वान किया। इस चैलेंज के तहत प्रतिभागी 1 से 3 मिनट के वीडियो रील पॉडकास्ट या डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अपने जिले की खासियतों और उपलब्धियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित ऐप डाउनलोड कर मोबाइल नंबर से पंजीकरण करना होगा। प्रविष्टियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने द्वीपों के युवाओं और छात्रों से इस अवसर का लाभ उठाने और अपनी विरासत को डिजिटल कहानियों के रूप में सामने लाने की अपील की है। मत्स्य पालन विभाग और भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण क्षेत्रीय आधार श्री विजयपुरम के सहयोग से गुप्तापाड़ा में समुद्री डीजल इंजनों की मरम्मत और रखरखाव पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम फरारगंज ब्लॉक के फिश लैंडिंग सेंटर में कल संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य मछली पकड़ने वाली नौकाओं में इस्तेमाल होने वाली समुद्री डीजल इंजनों के बेहतर संचालन और समय पर रखरखाव के प्रति मछुआरों को जागरूक करना था। कार्यक्रम प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और टूल किट वितरित किए गए। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी में काउंसलर के पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार 28 अगस्त को सुबह 9:30 बजे स्वास्थ्य सेवा निदेशक कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में होगा। उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक परियोजना निदेशक कार्यालय में उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए 03192-23116 पर संपर्क किया जा सकता है। वृक्षाबाद फीडर में मरम्मत कार्य के चलते कल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इनमें प्रातरापुर ऑस्टिनाबाद मरियम्मा मंदिर पत्थरगड्ढा के कुछ हिस्से पीटीएस ब्रिजगंज वृक्षाबाद बर्मानाला रंगाचांग 4 अन्नानगर कोड़ियाघाट चिरेटापुर और बिंडावाद के कुछ क्षेत्र शामिल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के प्रमुखों से की भेंटवार्ता। युवाओं को अंतरिक्ष तकनीक से जोड़ने पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने शिलीगुड़ी में SSB की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जवानों के कल्याण को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। हवाई उड़ानों में भारी कटौती और बढ़ते किराए पर सांसद विष्णुपद रे ने चिंता व्यक्त करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री से तत्काल हितधारक बैठक बुलाने का आग्रह किया। और डिगलीपुर में जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 पर वर्चुअल कार्यशाला आयोजित। छात्रों को वीडियो रील और पॉडकास्ट के जरिए स्थानीय

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत,
3: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी,
4: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
0: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक,
5: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर,
6: यन पॉलिसी यन कयन।
0: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
7: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
8: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:16 और 37 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमानी बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमानी बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिस कारण समुद्र अशांत रहेगा। खराब मौसम के चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 25 तारीख तक समुद्र में न जाएं। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। लीजिए अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों के यात्रा कार्यक्रम MV सेंटिनल कल संध्या 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 23 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। लिटिल अंडमान जाने के लिए MV कैमल बे 23 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। MV कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार की यात्रा पर 22 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 23 तारीख को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कालीघाट अपनी अगली यात्रा पर 27 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नैनकोरी माकाचूहा और अराफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 30 तारीख को दोपहर 12 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुँचेगा। MV कैमल बे नैनकोरी होते हुए कैमल बे जाने के लिए 25 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और 27 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV बाराटन कल सुबह 6 बजे स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुँचेगा। शहीद द्वीप के लिए MV कमोटा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। MV बम्बुका स्वराजदीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम आएगा। MV कचाल कल सुबह 7 बजे शहीद द्वीप स्वराजदीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 23 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV से स्ट्रेट

0: आइलैंड कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानीचंगा कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बू का कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 23 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। जन सूचनाएं, इसके अंतर्गत सुनिए एक सूचना।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड हमारी आर्ट कल्चर हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सबको जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेंजी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
0: इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म कालिया से। गायक कलाकार है आशा भोसले, किशोर कुमार व साथी। मजरू सुल्तानपुरी के गीत है, संगीत आर डी बर्मन का है।

लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक, सोनू निगम, जसविंदर नरूला और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में फिल्म जानवर का ये गाना। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: है वही आगे चलकर बड़ी सफलताओं का इतिहास रचता है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उससे प्रेरणा लेना सीखिए। अपने शब्दों में विनम्रता, व्यवहार में सादगी और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखिए, क्योंकि यही गुण इंसान की सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। याद रखिए, भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ही करते हैं। इसलिए हर दिन मुस्कुराइए, सीखते रहिए और विश्वास रखिए कि आपका सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, इस्मत चुगताई हिंदी उर्दू साहित्य की एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली लेखिका थी। उनका जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें उर्दू साहित्य की प्रमुख महिला कथाकारों में गिना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज, परिवार, स्त्री जीवन और मानवीय भावनाओं से जुड़े विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। दोस्तों, इस्मत चुगताई की भाषा सरल और सहज थी। उनकी कहानियों में आम जीवन के अनुभवों और सामाजिक परिस्थितियों का जीवित चित्रण मिलता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में टेढ़ी लकीर, गेंदा और चौथी का जोड़ा आदि शामिल है। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस्मत चुगताई जयंती उनके साहित्यिक योगदान को याद करने और नई पीढ़ी को उनकी रचनाओं से परिचित कराने का अवसर है। उनका लेखन आज भी साहित्य प्रेमियों को सोचने और समाज को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज गुरुवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का हमारा यह पहला कॉल।
1: हेलो
0: हेलो फ्रेंड्स।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं ग्राम गुनोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री बात कर रही हूँ। सर्वे
0: जी, तनुश्री कैसे हैं आप?
1: जी मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी ठीक हूँ
1: जी। और आपसे बात, मेरा पहली बार कॉल लगा है और आपसे बात कर बहुत मुझे अच्छा लग रहा है
0: जी। तो तनुश्री, आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है सिटी लाइट
0: जी।
1: और गाने के बोल मैम, मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ तो मैं गाकर बताऊँ?
0: जी जी जरूर।
1: मुस्कुरा

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जिंदगी में हर दिन एक नया अवसर देती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत मानता है

0: ऐसे करके गाना है मैम।
1: जी तनुश्री, आपकी आवाज़ तो बहुत ही प्यारी है
0: थैंक यू। और मैम मैं दोस्तों का नाम लेना चाहती हूँ।
1: जी। आप एक गीत अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: जी पहले तो भगवान सिंह परमार है और
1: जी
0: राकेश शिमला, राकेश जी है शिमला से, प्रेम सिंह छिछोरिया जी है, अमोल भट्टाचार्य है, रमेश प्रजापति जी, इन सब के साथ सुनेंगे। और मेरे पापा को भी डेडिकेट रहेगा और खास कर मैम आपको डेडिकेट रहेगा।
1: जी तो तनुश्री, चलिए सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है। इस वक्त जो आपके प्रोग्राम में कॉल करा था और मेरी कॉल लग गई है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी राकेश जी, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: हमारे यहाँ का मौसम जो है लगातार बारिश हो रही थी और अभी साफ हुआ है
0: जी।
1: और अभी भी बारिश की संभावना है, कल भी बारिश आ सकती है।
0: जी
1: जी हिमाचल ने मानसून मानसून दस्तक दे चुका है
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: क्षेत्र में।
0: जी तो राकेश जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम मुझे मालूम नहीं है और गाने बोल रहे हैं कि ये

0: पेड़ जो गोविंदर और अनुराधा की बात, अनुराधा पौडवाल की बात में एक
1: जी। तो राकेश जी, और आप ये गीत अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो ये गाना पूरे डिकेट रहेगा
1: जी।
0: पूरन वर्मा है, अविनाश तेली है, भगवान सिंह परमार है, रमेश प्रजापति है, और प्रथम सुनने वाले श्रोता पूर्णिमा जी है विजयपुरम से, और मोनिका जी है, सत्य विष्णु कुंड है, और धर्मवीर जी है दिल्ली से, और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के साथ में ये गाना सुनना चाहूंगा
1: जी। तो चलिए राकेश जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार। मेरी किन से बात हो रही है?
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। मैं
0: जी प्रेम जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। प्रेम जी, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी, हल्की से तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, रुक रुक कर।
0: जी
1: जी हाँ, और अभी फसल लगाई हमने सोयाबीन की जी, और काफी उत्साह है किसानों में भी।
0: जी तो प्रेम जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, मैं गीत सुनने से पहले बताना चाहूँगा आपको, मैं मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ
0: जी
1: और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ, और एक भजन गायक के रूप में भी अपनी जिंदगी को मतलब कर रहा हूँ वितरण। और फिल्म का नाम है, तो आमिर खान की फिल्म है फना, उसका सुनवा दीजिएगा, चांद सिफारिश करता तुम्हारी।
0: जी और ये गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी, भगवान सिंह परमार, लोकेन्द्र वर्मा, तुकाराम यादव, आशुतोष अविनाश, संगीता जी, केसरी सिंह राजपूत, भगवान सिंह परमार, लोकेन्द्र वर्मा, सुनील जा भोपाल से, रमेश चले भोपाल से, और उसके साथ में आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी और शिलोंग के शैली जी।
0: तो चलिए प्रेम जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: नमस्कार मैडम। चिरंजीवी क्रॉसर कॉलेज झलकपुरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं। मैं भी अच्छा, ड्यूटी से घर आया हूँ। बस पर फोन कर रहा था, ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था, तो घर में आया
0: जी। तो इंद्रभान जी, आज हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: वो राजेश खन्ना जी का फिल्म का गाना ना, अजनबी का, भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी रातों बातों में, ऐसा लगता हो किशोर कुमार, तब अजनबी।
0: तो चलिए इंद्रभान जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी हमारे युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवाणी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण के गाए फिल्म याराना के एक गीत के साथ। संगीत अनु मलिक का है।

लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म तरकीब का ये गाना। गीत रचना निदा फाजली का तथा संगीत आदेश श्रीवास्तव का है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
1: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
3: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एन्जॉयमेंट पर्पज़ नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूंगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
4: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at

स्टैचू। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम को फिल्म ऐसी भी क्या जल्दी है में। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी का तथा संगीत गौरी शंकर शर्मा का है।

लीजिए अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो के युगल स्वरों में समीर की गीत रचना। संगीत नदीम श्रवण का है तथा फिल्म का नाम है अग्नि साक्षी।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के लिए अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक के निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

0: हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन तेजपुर असम 784104 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1-7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देख सकते हैं। उधर भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डिप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूर संचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार द्वारा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल के से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply. Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti.

अभी आप संवेत स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने

0: के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव

0: भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की टीएमसी की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
2: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
3: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
4: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
5: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport

आते हैं। कार्यक्रम संदेश ये आते हैं में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म त्रिशूल से। गायक कलाकार है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास। गीत को पसंद किया है बिमली टान से ब्रिज, छोटा मोहन, बबीता और सुनीता ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

हेडो लिल्लीपुर से हमें अभिषेक, बिनीता और सीतल ने संदेश भेजा है। फिल्म हम किसी से कम नहीं के इस गीत के लिए गायक कलाकार है किशोर कुमार और साथी गीत रचना मजरू तथा संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन की एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन

0: एडिक्शन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एन्जॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूँ तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं, यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पे कंटेंट बनाएं, और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाएं, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: हंसराज हंस और श्वेता सेट्टी की आवाजों में अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बिच्छू का ये गाना। इस गीत को पसंद किया है 11 चरामा से नीलम और अमिता ने।

कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म क्या कहना का ये गाना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है डेरी फॉर्म से गीता और जगदीश।

लीजिए अब सुनिए। शादीपुर से बरखा और बसंती की पसंद पर फिल्म सोल्जर का ये गाना। गायक कलाकार है अलका याग्निक और कुमार सानू। गीत रचना समीर की तथा संगीत अनु मलिक का है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जनसेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिस कारण समुद्र अशांत रहेगा। खराब मौसम के चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 25 तारीख तक समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 58 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रवण माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:28:35 हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: कहा गया है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य वो आदत है जो हमारी क्षमता, समय और अवसर तीनों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति आज का कार्य कल पर टालता है, वो सफलता से स्वयं को दूर कर लेता है। इसके विपरीत परिश्रम, अनुशासन और समय का सदुपयोग हमें निरंतर प्रगति की ओर ले जाता है।